0: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026 प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र के प्रसारण आरंभ होते हैं। हम अपने सारे श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया रेलवे की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

इंसान जब जन्म लेता है तो उसे अपने शरीर की हर क्रिया, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना इत्यादि के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपने आखिरी पड़ाव पर जाने की तैयारी करता है तब भी

बुजुर्गावस्था में दूसरों की सहायता और सेवा लेनी पड़ती है, तो फिर हम क्यों जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन अहंकार में जीते हैं? अहंकार चाहे धन का हो, विद्या का हो, अपने कुल का हो, जाति का हो, अपने रूप का हो, अपने संस्कारों का हो, इस सवाल पर हम सबको प्रतिदिन विचार अवश्य करना चाहिए। उस प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे ताकि हमारा जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत हो सके। इसीलिए हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए।

हे मानव, तू इस दुनिया में आया है तो ये सोच कर आया होगा कि मैं मृत्यु लोक में आकर उस प्रभु परमात्मा को कभी नहीं भूलूंगा। परंतु जब हम दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं तो विषय विकार भी हमारे साथ दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं और उनकी भी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। परंतु हमें इस दुनिया में रहते हुए, अपने कर्मों को करते हुए, अपनी दैनिक क्रियाओं को निपटाते हुए उस प्रभु परमात्मा का नाम और सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें उसी के देश, उसी के धाम चले जाना है।

जैसे प्यासा आदमी जल को याद करता नहीं है, भूखा व्यक्ति अन्न को याद नहीं करता, उसकी याद उसे स्वतः ही आ जाती है। ऐसे ही परमात्मा की याद अपने आप आए तो वह लगन होती है। अगर लगन ना हो और जानबूझकर जोर लगाकर याद करते हैं तो परमात्मा प्राप्ति में देरी लगती है। जिसको परमात्मन प्राप्ति करनी है उसको परमात्मा की याद अपने आप आती है, वो याद करता नहीं है। इसलिए याद करने से मैं बहुत दिन बीत जाए इससे पहले उसको अपने जीवन में, अपने पल में, अपनी हर सांस के साथ संभालें।

आज के समय में बच्चों और युवाओं को धर्म भक्ति तथा अच्छे संस्कारों का महत्व समझाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि यही वो मूल्य हैं उन्हें सही दिशा प्रदान करते हैं। वास्तव में धर्म भक्ति संस्कार जीवन रूपी वृक्ष की मजबूत जड़ें हैं, जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में दृढ़ और सफल बनाते हैं। इसीलिए अपने बालकों में संस्कारों को रोपित करें, जिससे वो इन बातों को ध्यान रख पाएं।

आप सब पर प्रभु परमात्मा की कृपा यूं ही बने रहे, इसी आशा के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस खान। संगीत रचना सतीश भाटिया की है, गायक कलाकार है श्रीकांत परगांवकर।

आराध्य से मनचाहा वरदान प्राप्त कर मुनि सुतीक्ष्ण की साध पूरी हुई। प्रभु की इच्छा के अनुसार तब वो उन्हें अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम ले चले। श्री राम लक्ष्मण सीता का आगमन सुन अगस्त्य मुनि उनके दर्शनों को दौड़े। नाना प्रकार से श्री राम की पूजा वंदना करने हेतु जब उन्हें आसन पर बिठाया तो मुनियों का समूह प्रभु दर्शन के लिए एकत्र हो गया। पूरी ऋषि मंडली में श्री राम इस मुद्रा में बैठे हैं कि प्रत्येक उपस्थित जन को वो अपनी ही ओर देखते दिखाई देते हैं। श्री राम ने अगस्त्य मुनि को वहां अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे ऋषि मुनि द्रोही राक्षसों के विनाश का उपाय बताएं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से दंडक वन में पंचवटी जाकर गौतम मुनि के कठोर शाप का दमन करने की प्रार्थना की।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान। संगीत रचना सतीश भाटिया की थी। गायक कलाकार थे श्रीकांत परगांवकर। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सबसे पहले आज का पंचांग। आज है रविवार। विक्रम संवत 2083 के अधिक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। ऋतु चल रही है ग्रीष्म। सूर्योदय हुआ प्रातः 5:57 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:17 पर। श्रोताओं, ये था आज का पंचांग। अब आपको बता दें टुडेज अपडेट। टुडेज अपडेट में श्रोताओं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने त्रिपुरा के साल बगान में सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षित और सशक्त बना रही है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम को बधाई दी। आपको बता दें कि अंडर 18 एशिया कप 2026 में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला अंडर 18 टीम को बधाई दी गई। भारत के युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में उनकी प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय ने माय भारत युवा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक विकसित भारत की परिकल्पना की है जो युवा भारतीयों के विचारों, नवाचारों और आकांक्षाओं को आकार लेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत के युवा अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से देश को नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार है। माय भारत युवा सम्मेलन में 6000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया और देश भर में युवाओं को शामिल करने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलों को प्रदर्शित किया। श्रोताओं, ये थे टुडेज अपडेट।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, आइए आपको जानकारी देते आज दिन भर में हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। शाम 6:20 का समय नियत है कार्यक्रम गीता संदेश के लिए, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर नीमा रानी से अध्याय 5 के श्लोक 7 से 11 तक की व्याख्या। प्रातः 10 बजे हमारी महिला श्रोता साथी सुनती हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम शक्ति मंच, जिसे लेकर आएंगी आज सरिता धैया, जिसमें आज वो सुनेंगी महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य का कैसे रखें ख्याल, साथ ही स्तनपान की क्या है आवश्यकता। प्रातः 10 बजे बच्चों का कार्यक्रम होगा बाल सभा, जिसमें बच्चों की रचनाएं सुनेंगे, चुटकुले होंगी पहेलियां। श्रोताओं, संगीत से जुड़े मुख्य आकर्षणों के बारे में भी आपको बता देते हैं, अब से कुछ ही देर में यानी प्रातः 7:10 पर सदाबहार गीतों का कार्यक्रम होगा दिल पुकारे। प्रातः 7:40 का समय नियत है कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा का, ये लोक संगीत का कार्यक्रम है। श्रोताओं, प्रातः 8:30 का इंतजार हमारे श्रोता साथी करते हैं, मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुबह सवेरे का, भागीदारी सुनिश्चित होती है एक आसान से सवाल के माध्यम से, साथ ही ढेर सारी चर्चाएं होती हैं। चर्चा आज रहेगी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर, और साथ ही होगी चर्चा वसुधैव कुटुंबकम के बारे में। गैर फिल्मी गीतों और नगमों से सजा हमारे कार्यक्रम होता है कार्यक्रम स्वरांजलि, प्रातः 9:30 पर, और साथ ही सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, उसका समय आपका जाना पहचाना, जी हाँ, रात्रि 7:45 तक। फौजी भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम जय जवान, समय 7:30 शाम 7:30 पर सुनेंगे फौजी भाई अपना कार्यक्रम जय जवान, गाने नए पुराने। इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइएगा शाम 5:05 पर। श्रोताओं, किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम है अन्नदाता, आज है रविवार तो आज होगी थारे संदेश मारे गीत, समय शाम 6:30। आज है रविवार तो मुख्य आकर्षण रहेगा कार्यक्रम हेलो एफएम, सजीव फोन इन कार्यक्रम है। श्रोताओं, रात्रि 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक आप सुनते हैं, तो आज भी सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम हेलो एफएम 2213220744 लगाकर। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में, तो आप सुनते हैं रूपरेखा शाम 5 बजे और प्रातः 6:50 पर। तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को सुनते रहिए, अब आप सुनेंगे देशकांत।

अनिकेत कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रही हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 7:10 पर जुड़िएगा आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से कार्यक्रम दिल पुकारे के लिए। कृपया रेले की प्रतीक्षा करें।

0: -0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चंडीगढ़े भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडा समाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। KL राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान

निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: play at 368 for 3 in their first innings on day 2 in New Chandigarh today. Centuries from KL Rahul and Captain Shubman Gill, who remains unbeaten on 103, have put the men in blue in a strong position. Sai Sudarshan also contributed 81 before missing out on a maiden test century, while Rishabh Pant remained unbeaten with a brisk half century. And in hockey, Indian men's team has lifted the under-18 Asia Cup for the third time, thrashing host Japan in the final in Japan yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 7:10 हुए हैं। अब समय है रविवार के आकर्षण दिल पुकारे का। कार्यक्रम दिल पुकारे में आप सबको आपकी अपनी हस्ती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी का सादर प्रणाम। वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आज है संडे यानी रविवार, यानी के पूरे सप्ताह का जो व्यस्तता भरा दिन होते हैं ना, जितने भी दिन होते हैं उसके बाद आ जाता है संडे। और संडे को हम आराम से उठते हैं क्योंकि थोड़ी सी गर्मी का मौसम भी है और कभी बरसात हो जाती है तो ऐसे में थोड़ी तबीयत भी डाउन सी फील होने लग जाती है। तो ऐसे में आपके साथ, आपका साथ निभाने के लिए आ जाता है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, जो आपकी तबीयत को बिल्कुल बिंदास बना देता है। जी हां श्रोताओं, आज संडे के दिन आप सुनेंगे प्यारे से गीत कार्यक्रम दिल पुकारे के माध्यम से। तो चलिए भाई, रेडियो सेट को आपने ट्यून किया है FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगर ऐप के माध्यम से जुड़े हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से पूरे विश्व में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रमों को देखा जा रहा है। कार्यक्रम का पहला गीत बड़े ही रोमांटिक नंबर लाने की कोशिश हमने की है, जिसे आपकी संडे की ना बिल्कुल जो सुबह है बहुत प्यारी सी होने वाली है। पूरा दिन इन गीतों को गुनगुनाने वाले हैं आप लोग। तो 1976 में आई फिल्म फकीरा, NNCP ने इसे प्रोड्यूस किया था श्रोताओं। मुख्य भूमिकाओं में शशि कपूर, शबाना आजमी, असरानी, अरुणा ईरानी और अन्य बहुत से कलाकार थे जिन्होंने इस फिल्म को बहुत ही सुपर डुपर हिट बनाया। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और जो गीत हम आपको सुनाने वाले हैं वो मखमली आवाज की मल्लिका लता मंगेशकर की है। और साथ ही आपको बता दें कि 24वें फिल्मफेयर पुरस्कार में फली मिस्त्री को सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए और SS Samal को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का प्यारा सा रोमांटिक गाना।

जी हाँ श्रोताओं, दिल में तुझे बिठा के कर लूँगी बंद आँखें, ये तो हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के लिए ही कहेंगे कि दिल में बैठा हुआ है, रोम रोम में बसा हुआ है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रोताओं, दिल पुकारे। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म पलकों की छाँव में। श्रोताओं, ये फिल्म आई थी 1977 में। मुख्य भूमिकाओं में नजर आए राजेश खन्ना और हेमा मालिनी, और विशेष भूमिकाओं में नजर आए थे जितेंद्र। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आपको बता दें कि इसे फिल्म से प्रेरित होकर 2008 में फिल्म आई थी वेलकम टू सज्जनपुर। तो हम जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं उसे गाया है लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप आनंद उठा रहे हैं संडे स्पेशल यानी कार्यक्रम दिल पुकारे। कार्यक्रम का ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था दर्द। श्रोताओं, 1981 में ये फिल्म आई थी और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए राजेश खन्ना, पूनम ढिल्लो और हेमा मालिनी। गीत नक्श लायरपुरी का था और संगीत खय्याम का। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म ईमानदार से। जी हाँ, जानते हैं जैसे ही हमने इस गीत को चलाएंगे और आपके जहन में सारी जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिल्म का नाम है ईमानदार। मुख्य भूमिकाओं में नजर आए संजय दत्त और फरहा, और जो संगीत दिया वो दिया कल्याण जी आनंद जी ने, और जो गीत है हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको बता दें कि अलग अलग से दो आवाजों में है, अलग अलग से है, पर हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले का गाया यह गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, इस संदेश से पहले आपने सुना फिल्म ईमानदार का यह गीत कि और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही प्यार छुपा रखा है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार के साथ हमारा प्यार स्नेह का जो जुड़ाव है वो बना हुआ है और बना रहेगा। 90 वर्ष पूरे कर चुका है हमारी जो आकाशवाणी है, पूरे 90 वर्ष पूरे कर चुकी है और आपका और हमारा साथ यूं ही बरकरार रहे, इसी आशा के साथ कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत 1978 में आई फिल्म बदलते रिश्ते का, जो इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए वो थे जितेंद्र, ऋषि कपूर, रीना रॉय, असरानी और बहुत से अन्य कलाकार जिन्होंने फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया। गीत अनजान के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और जो प्यारा सा बिल्कुल फेमस गीत आपको सुनवाने वाले हैं इस फिल्म का, महेंद्र कपूर लता मंगेशकर के स्वर में।

0: श्रोता, फिल्म बदलते रिश्ते के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम दिल पुकारे संपन्न करने की अपनी हंसती मुस्कुराती से की प्रमिला सैनी को अनुमति दीजिए, इसी आशा के साथ कि जितने प्यारे प्यारे गीत हमने आपको सुनवाए हैं ना, ऐसा ही मूड अपना पूरा दिन बनाए रखिए और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के साथ बने रहिए FM 101.4 MHz पर। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल पुकारे FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा में लखविंदर सिंह और उनके साथी के गाए ये पंजाबी शब्द। कार्यक्रम का आगाज करने से पहले आपको सुनवा रहे हैं संदेश।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
2: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
3: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
4: जिसके

श्रोताओं, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाजे नगाड़ा में लखविंदर सिंह और उनके साथी के गाया ये शब्द।

ਅੱਗ ਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਪਗ ਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा। इसमें आज आपने सुना लखविंदर सिंह और साथी के गाए ये पंजाबी शब्द। FM एंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर जुड़िएगा आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से कार्यक्रम सुबह सवेरे के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: डीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
5: Collaborate closely to maintain security.
6: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
5: Full potential of our time.
3: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में

0: 44 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
1: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
2: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतविदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने 3री गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रिस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
4: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे

0: खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSS Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
5: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on fake currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of Patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
6: For Akashbani News, Shuman Bhattacharji, Agartala.
4: The National Testing Agency or NTA has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
7: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to fall prey to the fraudulent solicitations. The agency has also urged all aspirants to ignore the rumors and to rely solely on official communication issued by NTA through its verified website and channels. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
4: Minister of State for Health and Family Welfare, Anupriya Patel, has said that the government is committed to fostering a digital health ecosystem in the country. In an exclusive interview with Akashwani News, the minister said that India has created over 90 crore unique Abha identity cards under Ayushman Bharat digital mission and over 100 crore digital medical records have been linked to these Abha IDs. The full interview will be broadcast in our special series 12 Years of the Modi Government today at 7:10 p.m. on 100.1 MHz Akashwani FM Gold and additional frequencies. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the BJP government will undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state, such as Dakshineshwar and Kalighat temples. He said work has already commenced to elevate the Ganga Sagar Mela to international standards, while facilities at prominent religious landmarks like Dakshineshwar and Kalighat will be significantly upgraded. Speaking at a program in Kolkata, Mr. Adhikari said grant arrangements will be made for the upcoming Shrabani Mela at Tarakeshwar. Hitting out at the previous Trinamool Congress administration, the Chief Minister alleged that West Bengal suffered from acute lack of employment opportunities and systemic corruption over the past 15 years. describing West Bengal as a sacred spiritual land,

श्रोताओं, खुशियों से चेहरे को ढांप लो, खुशियों को चेहरे से खुशियों से चेहरे को ढांप लो, गमों को दूर से झांको, पर ना उसने ताको। घबरा जाएंगे ये गम सारे, जरा अपनों की नमी को भांप लो। थाम लो दामन उनका भी जो बैठे हैं थोड़े रूठे से नाराज से। पकड़ो उनका हाथ और उनके दिलों में छुपी नाराजगी की वजह को जान लो। जी हाँ श्रोताओं, हमारे आसपास जो भी है उनकी नाराज़गी को जानिए, उनकी सोच को जानिए, उनके व्यवहार को जानिए, जिससे क्या होगा कि हम उन तक पहुंच पाएंगे, उनके दिल तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि हम इधर उधर तो जरूर झांकते हैं, पर अपने अपनों को नहीं देख पाते, खुद को नहीं देख पाते, खुद से नहीं बतिया पाते। तो चलिए, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम पूरे 60 मिनट तक हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि एक घंटा कहने में थोड़ा सा कम लगता है, पर 60 मिनट बहुत ज़्यादा लगता है ना। मज़ा आ जाएगा एक घंटा आपके साथ, 60 मिनट बहुत मज़ा आने वाला है। तो जानकारियों और मनोरंजन के पिटारे को संभाले आ चुकी है आपकी अपनी हंसती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी। श्रोताओं, परिस्थिति कोई भी हो, सिचुएशंस कोई भी हो, हम आ जाते हैं आपकी सेवा में बिल्कुल सही समय पर, रोजाना प्रातः 8:30 पर। हर रोज रोजाना होता है कोई आपका अपना प्रस्तुतकर्ता, आपका अपना साथी, जो आपके साथ करता है ढेर सारी बातें। तो चलिए, हम भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, आसान सा प्रश्न पूछेंगे, जिससे आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी आप ही के कार्यक्रम सुबह सवेरे में। तो कार्यक्रम को सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए प्रातः 9:30 तक। पहले सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आज है 7 मई, तो आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है। तो आज है 7 मई, आज संडे भी है, पर यह हमारा आज का प्रश्न नहीं है। हमारा आज का प्रश्न है कि आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो आपको बताना है इस वर्ष की थीम क्या है, क्योंकि हर दिवस की कोई ना कोई थीम सरकार तय करती है या WHO तय करता है, तो यूनेस्को तय करती है। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम क्या है। हम कर रहे हैं आपके टेक्स्ट मैसेज का इंतजार 9466021336 पर। जी हाँ, 9466021336 पर आपके टेक्स्ट मैसेज का इंतजार कर रहे हैं 8:45 तक। विनम्र निवेदन हमेशा से यही रहता है श्रोताओं कि जब भी आप अपने नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो आपके प्रश्न का, जो हम प्रश्न आपसे पूछा है, उसका उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए और आपके नाम के बीच में, दो नामों के बीच में पर्याप्त स्थान होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, गैप होना चाहिए और क्षेत्र के नाम के साथ भी। और कोशिश कीजिए हिंदी में, जिससे हम सही प्रकार से उच्चारित कर पाए। हमारी शताब्दी एक्सप्रेस बिल्कुल भी कहीं ना रुके, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि सारे श्रोताओं के नाम हम इस कार्यक्रम में शामिल कर पाए, क्योंकि हमने यूं प्रश्न पूछा, हमारे पास फटाफट से नाम भी आने लग गए सही जवाब के साथ। पर इंतजार करिए 8:45 के बाद का, तो हम आपके नाम शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। तब तक एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: O Bahia?
1: Sou esse!
2: Nossa! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो.
5: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया. मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी.
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं.
5: तो फिर सही नंबर,
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड.
5: आपने तो बचा लिया दीदी.
4: काम से नहीं.
3: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव.
7: श्रोतो, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे. चलिए एक प्रेरक प्रसंग आपसे बांट लेते हैं. गर्मी का दिन था, जंगल में एक लकड़बग्गा प्यास से तड़प रहा था. साथ ही साथ वो पानी की तलाश में जंगल में उधर उधर भटक रहा था. तभी घूमते हुए उसे एक नदी दिखाई पड़ी. दूर से देखने पर नदी में पानी कम लग रहा था, फिर भी उसने दौड़कर जल्दी से अपनी प्यास बुझा ली. भरपेट पानी पीने के बाद लकड़बग्गा मानो तृप्त हो गया. अब उसने सोचा कि गर्मी काफी है तो क्यों ना नदी के बीच में जाकर साफ व स्वच्छ पानी में स्नान भी कर लिया जाए. लेकिन नदी की कितनी गहराई है उसे मालूम ना था. लकड़बग्घे ने वहीं खड़े एक ऊंट से पूछा, ताऊ पानी नदी में पानी कितना है, कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा स्नान करने में. ऊंट ने अपने दांत निपोड़ते हुए कहा, मेरे घुटने भर पानी है बच्चे, मैं अभी अभी नहा कर निकला हूं, जा तू भी नहा ले. ऊंट की बात सुनते ही लकड़बग्घे ने कुछ नहीं सोचा और तुरंत नदी में छलांग लगा दी और बीचों बीच पहुंच गया. फिर वो अचानक डूबने लगा. लकड़बग्घा कभी गोते खाता तो कभी अपना सिर पानी से बाहर निकालकर सांस लेता. जैसे तैसे उसने अपनी जान बचाई और बाहर आ गया. बाहर आते ही उसने गुस्से से ऊंट से अपशब्द कहे, तुमने क्यों कहा पानी घुटनों तक है, मैं तो डूबकर मरने वाला था. ऊंट ने जवाब दिया, भड़क क्यों रहे हो भाई, मैंने तो बिल्कुल ठीक ही कहा था कि नदी में पानी मेरे घुटनों तक है. अब तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूं. इसके बाद लकड़बग्घे को अपनी गलती का एहसास हुआ. जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी में हर किसी का तजुर्बा अलग अलग होता है और वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव की रोशनी में ही किसी विषय का जवाब देता है. मुमकिन है जो बातें उसके लिए फायदेमंद हो हमारे लिए नुकसानदायक हो. इसीलिए ये सदैव याद रखें कि सिर्फ दूसरों के तजुर्बे को देखकर चलना जीवन में हमें कभी भी डुबो सकता है. अपनी विवेक से काम लें और सावधान रहें, सतर्क रहें, मस्त रहें और सदैव हंसते खिलखिलाते रहें, क्योंकि हमारे जीवन में भाई टेंशन इतनी है कि हमें ऐसा लगता है कि अब क्या होगा. तो इसीलिए क्यों ना अपने जीवन में इन व्यस्तताओं को दूर करते हुए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को एंजॉय करें.

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। जी हाँ श्रोताओं, FM 101.4 MHz पर। और अगर ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से पूरे विश्व में आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद उठा पा रही हैं। और आज है आपके साथ आपकी अपनी हंसती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी। क्या बात है, रेडियो की तरफ पूरे कान लगे हुए हैं क्योंकि आपके नाम आने वाले हैं। पर आपको पता है ना कि प्रश्न का उत्तर सही होगा तभी आपके नाम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फटाफट से सोचने लग गए क्या है आज का जवाब। बड़ा ही आसान था आज का प्रश्न। आज का प्रश्न था श्रोताओं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 मनाया जा रहा है आज, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी आज की थीम क्या है इस बार की। जो सही जवाब है वो है बीमारी के बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन यानी फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि खाद्य जनित बीमारियां यानी फूड बॉर्न डिजीज के बारे में सही जानकारी, आंकड़े और वैज्ञानिक प्रमाण हमें प्रभावी समाधान खोजने में मदद करते हैं ताकि हर व्यक्ति को सुरक्षित भोजन मिल सके। क्योंकि भाई भोजन के बिना तो कुछ भी नहीं है, तो खाद्य सुरक्षा तो बेहद जरूरी है। क्योंकि आजकल का समय ऐसा आ गया है कि हम चाहकर भी इन चीजों से बच नहीं पाते हैं। क्या चीजें? जी हाँ, हमारे जो किसान भाई यूरिया प्रयोग करते हैं उसका बहुत ध्यान रखें, जैविक खेती करें। क्योंकि कई किसानों से हमने सुना है कि भाई ये जो है खेत बोने वाले जो अनाज है, मतलब जो बेचने वाला अनाज है वो बोया जाता है और ये खेत है जो हम खाएंगे। तो हमारे किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि जो आप बेच रहे हैं ना वो उसको भी कोई ना कोई खा ही रहा है। तो अगर आप जैविक खेती की तरफ अग्रसर है तो अपने पूरे खेत को जैविक खेती के साथ जोड़े और जो अपने पारंपरिक खाद है उसका ही प्रयोग करें, जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा बनी रहे और हमारे अंदर जो ऊर्जा का संचार है वो प्रॉपर तरीके से रहे। क्योंकि हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा, और हमारा देश तब मजबूत होगा जब आकाशवाणी मजबूत होगा। क्योंकि भाई हम आप तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक भी, चर्चा का विषय भी यही रहने वाला है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो हम सब पूरे परिवार समझे, पूरे विश्व को परिवार समझें, तो इसी परिवार में शुमार है आप भी। कैसे? प्रश्न का उत्तर देने के साथ। तो प्रश्न का उत्तर हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले हमारे पास जो सही जवाब के साथ नाम आया है वो है रामनगर कैथल से सुनील दत्त, विनायक दत्त और इनके साथ है आशा रानी। आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी और इनके साथ है कृष्णा चंद्रवंशी। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतन महाराज सुलरकर। दरियापुर भामली महाराष्ट्र से आप है गजानन येले, नवदीप येले और इनके साथ है विश्वदेव येले। गांव नलोई जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा। इनके साथ ही दतरंगी भाटापारे से छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हीरामणि वर्मा, इनके साथ है पारसमणि वर्मा जी। रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल हमारे साथ जुड़ गए थे। योगी मोहला बराड़ा जिला अंबाला से। अगले श्रोता दरियापुर भामली से, अरे भाई दोबारा नाम ना भेजे। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं पद्मा टॉकिस नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह और इनके साथ है पल्लवी शाह। सरोज सैनी, राकेश सैनी, यादवेंद्र सैनी सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। सही जवाब देने के साथ ही हमारे साथ श्रोता जुड़े अंबागढ़ चौकी

छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अन्ना सोनी के साथ हैं रेहान जी, और अरविंद कुमारी गुड़िया कुमारी भावे कुमारी बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से जुड़ गए थे। सही उत्तर देके जुड़े हमारे श्रोता ग्राम पांजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी, कैलाशनगर कुरुक्षेत्र से आप सुरेंद्र दत्ता, बंटी शंटी उनके साथ लाडी भी जुड़ गए थे। अगले श्रोता हमारे साथ भगवान सिंह और ललिता सिंह सेले हिमाचल प्रदेश से। अगले श्रोता मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से जुड़े हैं सोपान तायड़े और विजया तायड़े जी। अगले श्रोता देखते हैं कौन है, ये हैं तन्मय सिंह और सिद्धांत सिंह सिले हिमाचल प्रदेश से। श्रोता जुड़ गए टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि सानवी और इनके साथ छाबड़ा परिवार। अगले श्रोता ये हैं राजेश कुमार मेहरा क्लासिक रेडियो श्रोता संघ बकानी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से। अगले श्रोता सुंदर नगर हिसार से जुड़े हैं मोनिका गुज्जर, पंकज इनके साथ है कीरत। श्रोता जुड़ गए ये कौन है, बेंगलोर से राजाजी नगर से है एनआर प्रसाद और इनके साथ है अखिला प्रसाद जी। अगले श्रोता भाई दोबारा नाम ना भेजे, श्रोता एस जुड़े सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीना ढींगरा, कृतिका विश्व और इनके साथ हैं विजय जी। उमेश सांगवान है पैंतावास कला जिला चरखी दादरी से। श्रोता जुड़ गए शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, गौरव सैनी और इनके साथ हैं अनीता सैनी जी। गांव भाणा ब्राह्मणावाला नरवाणा से मेघराज शर्मा भी जुड़ गए। सही जवाब देने वाले श्रोता सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, इसके पप्पी एमएलबी रोड ग्वालियर से जुड़ गए थे। श्रोता जुड़ गए पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु अर्णव आनंद और इनके साथ है आनंद। रवि और इंदर जुड़ गए थे रानीगंज बंगाल से। अगले श्रोता हैं कहां से, कदुआपाड़ा जगत सिंहपुर ओडिशा से कविता साहू, इनके साथ है प्रमोद कुमार साहू जी। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से आप जुड़ गए संतोष खड़से और इनके साथ है विनोद खड़से जी। प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़ गए थे। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से जुड़ गए थे। श्रोता जुड़ गए हमारे साथ कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता इनके साथ है प्रतीक हेवराले जी। बीपी गौतम, सरिता गौतम जुड़ गए एटानगर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। अगले श्रोता विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक और मयंक मुनत बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। ये हमारे श्रोता रोहानसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदिनी शाह और मनीष साहू जी। अगले श्रोता देखते हैं छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी, मोहम्मद जोहान सैफी वेलफेयर, इनके साथ हैं लीबा मलिक और आबाद खान, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, हिंश कुमार चंदन सौंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से, रश्मि झरना है राजकोट गुजरात से। ये श्रोता जुड़ गए भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल छिप्पा, पूजा परिहार जी। अगले श्रोता संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। ये श्रोता है बबलू साहू, जामुन देवी साहू, आराध्या साहू ग्राम नागर कोहरा से। अगले श्रोता देखते हैं ये हैं गांव चौहल्ला बागपत से संजय ढींगिया और इनके साथ हैं नमन ढींगिया जी। भाटा भारत छत्तीसगढ़ से आप हिमकेश्वर साहू और करण राहुल साहू। अगले श्रोता ये कौन से हैं भाई, इन्होंने कुछ भी नहीं भेजा, खाली ब्लैंक भेज दिया है। ये है श्रोता रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, कुंडलेश्वर वार खंडवा से योगेश गुजराती जी। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से आप लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई शैलेश लोखंडे जी। अगले श्रोता यह है गंज डुंडवारे से शमसुल कमर राही शाहीन और फातिमा और इनके साथ है अनु। बन भगेरा जिला राजानंदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सरवा, आशा सरवा के साथ जुड़ गए थे। आरसी कामड़े के साथ करुणा कामड़े हैं कहां से, जवाहरनगर दुर्ग से। ये श्रोता है बोरसेरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू, बीमा साहू जी। ये है संजीव स्वामी सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र से। गांव उगाला जिला अंबाला से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, इनके साथ है राघव। राहुल नगर अमरावती से आप सिद्धार्थ गोंडाने जी, अर्चना चाय गोंडाने जी, इनके साथ है हीरामन शिंदे जी। शमुदयाल खटक है पूजा खटक के साथ जाखोद से। पुराना तालाब डुमराव से आप वलियुल अंसारी, अस्मानाज अंसारी जी। और मंगोली जट्टान से आप है तरसेम कौशिक, रुद्र कौशिक, सीमा कौशिक और बसंत कौशिक जी। गुमथला से उर्मिला कंबोज और इनके साथ है राजेंद्र कुमार जी। तो बहुत सारे श्रोताओं ने प्रश्न का सही उत्तर दिया, इनका देते हैं दिल से धन्यवाद। और आपको बता दें कि आज हमारे प्रश्न में था कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या है, तो हमने आपको ये जानकारी भी दी। साथ ही आपको बता दें कि हमारा देश है कृषि प्रधान देश, तो हम अपने धरती पुत्रों से, किसान भाइयों से विनम्र निवेदन करेंगे कि हमारा जो देश कृषि प्रधान है उसको बहुत अच्छे वाला अनाज जो दिया जाए, जिससे हमारा देश निरंतर प्रगति करता रहे।

श्रोताओं, बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की। जी हाँ, ये एक संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध वाक्य है। इसमें वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी और एव का अर्थ है कुटुंबकम, यानी पृथ्वी एव का अर्थ है वसुधा यानी हमारी पृथ्वी, और कुटुंबकम का अर्थ है परिवार। यह संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ये विचार भारतीय संस्कृति की उदारता, सहिष्णुता और मानवता का प्रतीक है। श्रोताओं, यह हमें सिखाता है कि सभी मनुष्य, चाहे वह किसी भी देश, धर्म, भाषा या संस्कृति के हों, हमारे अपने हैं। हमें सभी के प्रति प्रेम, सम्मान और सहयोग का भाव रखना चाहिए। विश्व में भाईचारा और एकता की भावना को बढ़ावा देता है, जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव को समाप्त करने की प्रेरणा देता है, शांति, सद्भाव और सहयोग का संदेश देता है, मानवता को सर्वोपरि मानने की शिक्षा देता है, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर कार्य करने की भी प्रेरणा देता है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो श्रोताओं, आज दुनिया अनेक चुनौतियों जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, महामारी और संघर्षों का सामना कर रहा है। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब सभी देश और लोग मिलकर कार्य करें। ऐसे समय में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और सहयोग की भावना विकसित करने की प्रेरणा देता है। क्योंकि श्रोताओं, वसुधैव कुटुंबकम एक वाक्य नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक महान भारतीय सोच है। यह हमें सिखाता है कि संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें। जब हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानेंगे तभी सच्चे अर्थों में शांति, प्रेम और भाईचारा स्थापित होगा। इसीलिए अयम निजः परो वेति गणना लघु चेता सम उदार चरिताम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है और वह पराया है। ऐसी सोच छोटे हृदय वाले लोगों की होती है। उदार हृदय वाले लोगों के लिए पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इसीलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना।

श्रोताओं, बात करते हैं समाज में आकाशवाणी की भूमिका का, क्या योगदान है आकाशवाणी का। जैसे कि आपको पता है कि हमारी आकाशवाणी, आपकी आकाशवाणी पूरे 90 वर्ष हमारे साथ रह चुकी है, और अगर आपका और हमारा साथ यूं ही बरकरार रहा तो ताउम्र, यानी कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा आकाशवाणी तेरा नाम रहेगा। बिल्कुल ये बात सही साबित होगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक दूसरे को ये जो हेरिटेज है ये देते जा रहे हैं। तो क्या योगदान है आकाशवाणी। भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय रेडियो प्रसारण माध्यम है श्रोताओं। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। समाज के विकास में अगर हम आकाशवाणी के योगदान की बात करें तो शिक्षा का प्रसार, आकाशवाणी ने विद्यार्थियों और शिक्षकों और आम नागरिकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए हैं जिनसे ज्ञान का विस्तार होता है। जैसे कि आप रोजाना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से प्रातः 7:10 पर सुनते हैं कार्यक्रम NCERT। बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है इस कार्यक्रम से। अब बात करते हैं कृषि विकास में सहायता की, तो किसानों को नई खेती तकनीकों, मौसम की जानकारी, फसल सुरक्षा, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। साथ ही उनको लोक संगीत के बारे में भी बताया जाता है और मनोरंजन भी दिया जाता है। जैसे कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र पर रोजाना कार्यक्रम आता है, 6:30 पर कार्यक्रम अन्नदाता, किसान वाणी और 7 ग्राम संसार। श्रोताओं, साथ के साथ हम आपको अपने आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रमों की जानकारी भी देते जा रहे हैं, तो आप नोट भी करते जाइए। बात करते हैं समाचार और सूचना का माध्यम। देश विदेश की विश्वसनीय और त्वरित खबरें लोगों तक पहुंचाने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूरा दिन आप समाचार प्रभात, समाचार संध्या, ये सारी चीजें आप सुनते हैं। समाचार पूरे विश्व में जो भी हो रहा है, भारत में जो भी हो रहा है, इसके साथ ही हम अपने जो है समाचार देते हैं अपने आसपास के क्षेत्रीय समाचार। तो बात करते हैं अब सांस्कृतिक संरक्षण की। लोकगीतों, शास्त्रीय संगीत, कविताओं, नाटकों और विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित भी किया गया है। आप अगर पूरे भारत की बात करें तो जितने तरह के हमारे देश में बोली और भाषाएं, तकरीबन सभी में आकाशवाणी कार्यक्रम पेश करता है। और लोक संस्कृति में अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना था कार्यक्रम बजे नगाड़ा में, लोक संगीत का ये कार्यक्रम है, और किसान वाणी है, शक्ति मंच है, बहुत सारे कार्यक्रम है जिसमें आप लोक संगीत को सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की, तो विभिन्न राज्यों, भाषा और संस्कृतियों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। आपदा और संकट के समय सहायता करता है। बाढ़, भूकंप, महामारी और अन्य आपदाओं के दौरान लोगों तक आवश्यक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य भी आकाशवाणी करता है, और बड़ी विश्वसनीय सूचनाएं होती हैं श्रोताओं। सबसे मेन बात जिसको रेडियो सुनते ही आपके मन में क्या आता है, अरे बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिलेंगे, तो मनोरंजन का मुख्य साधन है, बिल्कुल टाइम नहीं मांगता, बस एंजॉय कीजिए, अपने कार्य को गति देती रहिए, क्योंकि संगीत, नाटक, कहानी, वार्ताएं और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का स्वस्थ मनोरंजन करता है ये, तो जानकारी तो देता ही है। तो श्रोताओं, आकाशवाणी केवल एक रेडियो सेवा नहीं है, बल्कि शिक्षा, सूचना, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का सशक्त माध्यम है। पिछले 90 वर्षों से इसने हमारे भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विकास में अमूल्य योगदान दिया है, और हमें गर्व करना चाहिए कि आप आकाशवाणी की श्रोता है। हम आकाशवाणी पर बैठे हुए हैं आपके साथ बतियाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, और ये आकाशवाणी है बिल्कुल मीठी मीठी चाशनी सी।

जी हाँ श्रोताओं, इश्क दी चाशनी, ये चाशनी ही है जिससे आकाशवाणी और हमारे श्रोता बंधे हुए हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों की छुट्टियां चली हुई हैं और ऐसे में गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए खुशी और आनंद का समय कौन सा होता है? इन छुट्टियों में मामा के घर जाना बच्चों को सबसे अधिक पसंद आता है। मामा का घर बच्चों के लिए प्यार, स्नेह और मस्ती का खजाना होता है। मामा के घर पहुंचते ही बच्चों का स्वागत बड़े प्यार से किया जाता है। वहीं नए दोस्तों के साथ खेलने, बाग बगीचे में घूमने, आम और अन्य स्वादिष्ट फलों का आनंद लेने में इनको बहुत मजा आता है। मामा के घर का वातावरण बच्चों को नई ऊर्जा और खुशी से भर देता है। वहां बिताए गए पल जीवन भर की मीठी यादें बनकर हो जाते हैं। इसलिए गर्मी की छुट्टियों में मामा का घर बच्चों के लिए खुशियों का संसार होता है। तो इस बार आप भी गए हैं ना मामा के घर?

जी हाँ श्रोताओं, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, बात करते हैं रिश्ते की। रिश्ता कोई भी हो श्रोताओं, सब अपनापन स्नेह मांगते हैं, तो अपने रिश्तों में प्यार और स्नेह बनाए रखिए। बात चाहे आकाशवाणी की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे वसुदेव कुटुंबकम की हो, तो अपने प्यार को बनाए रखिए। अपने घर में तू तू मैं मैं की ईंटें बिल्कुल ना लगाइए, अपने घर में हम की नींव रखिए, जिससे आपके घर की, परिवार की, समाज की, देश की, वसुदेव कुटुंबकम वाली बात पूरी हो जाए और हमारी विश्व की इमारत बहुत अच्छी हो जाए। इसी आशा के साथ कि आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपनी हंसती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी को कार्यक्रम सुबह सवेरे संपन्न करने की अनुमति दीजिए। इसी आशा के साथ, विनम्र निवेदन के साथ कि आप अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराएंगे। शिकायतों, सुझाव और प्रशंसा बस हमारे मेल आईडी पर प्रेषित कर दीजिए। कार्यक्रम आपकी बात में हर मंगलवार को शाम 7:30 पर आपकी बात akashvani@gmail.com पर आपके नामों के साथ तसल्ली बख्श आपके जो जिज्ञासा है उनको शांत किया जाएगा। अब अपनी हस्ती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी को कार्यक्रम सुबह सवेरे संपन्न करने की अनुमति दीजिए।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि। कार्यक्रम का आगाज शैल के स्वर में।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रोताओं, मिलिंद इंगले के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम स्वरांजलि यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। प्रातः 10 बजे जुड़िएगा आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से हेमलता के साथ। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

आने वाली फिल्म साथ हिंदुस्तानी के लिए। मैं उन दिनों कलकत्ते की नौकरी छोड़ करके दिल्ली आया हुआ था, और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं अब्बास साहब से मिलने यहाँ बम्बई आया, जूहू तारा रोड पर उनके अपार्टमेंट में जहाँ पर वो अपना लेखन वगैरह किया करते थे, वहाँ उनसे मिलने गया। एक आधा घंटा मिलने के बाद मैं जब नीचे आया तो उनके असिस्टेंट थे तीन।

0: आनंद जो कि बाद में जाकर के सत्यजीत रे के असिस्टेंट बने, उन्होंने आकर के मुझे नीचे बताया कि अब्बास साहब ने आपकी जो तस्वीर देखी और आपसे जो मुलाकात हुई वो उनको पसंद आई और मेरी शुरुआत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ हुई। उनकी सोच जो थी वो एक बहुत ही आम आदमी की सोच होती थी। उनके मन में ये था कि ये जिस तरह से उनके किरदार या जो चरित्र उन्होंने लिखे थे इस फिल्म के बारे में, जिस तरह से वो गुजरे होंगे या जिस तरीके से उन्होंने अपना ये जीवन व्यतीत किया होगा, उसी तरह से उनके कलाकारों को भी फिल्म में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से एक थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में गाड़ी में बैठ करके हम लोग गोवा गए और रास्ते में जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता गया, अगर किसी सर्किट हाउस में जंगल के बीच कहीं एक मकान मिल जाता था तो वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल में पूरा कास्ट और पूरे वर्कर्स सब एक साथ वहाँ ज़मीन पे हम लोग सोते थे और सभी एक किस्म का खाना खाते थे, एक ही कमरे में सब लोग रहते थे एक ही साथ, कोई भेदभाव नहीं था। एक उनका एक बहुत ही सोशलिस्टिक और मॉरल इशू था ये उनके जीवन में।
1: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम पुरस्कारों से ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को नवाजा गया। 1969 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्मी दुनिया में जहां अनेकों फिल्मों के लिए लेखन किया, उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन पैरेलल सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा कहा जाता है, वहीं ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अब्बास साहब की ट्यूनिंग फिल्मकार राज कपूर के साथ बहुत अच्छी थी।
2: मुंबई में सब बहरे बसते हैं क्या?
3: बहरे भी और अंधे भी, इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवार रुपयों की झनकार के। मेरे भाई बम्बई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा। मगधरा सामने से हटके खड़े हो, मेरे भाई धंधे का टाइम है। माई
2: धंधा यानी कि काम ना है? काम जो भाई, तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए?
3: जो मैं करता हूँ भीख मांगनी चाहिए।
2: नहीं कोई काम बताओ मुझे, काम बताओ।
3: तो सोचना पड़ेगा, कुछ पढ़ा लिखा है?
2: जी ये पास हूँ सच का। ये देखो मेरी डिग्री, साथ साथ ये फिरता हूँ मैं। ये देखो
3: ईमानदार हो?
2: सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल। ये देखो
3: जवान हो, मेहनत कर सकते हो?
2: डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ, कोई करा के देख ले।
3: तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता?
2: काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं?
3: ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420।
2: थैंक यू बॉस, थैंक यू।

0: लिया
1: कोई ना,
0: एकी मैं कुफर तो लिया
1: कोई ना,
0: एकी मैं जहर को लिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ हट के पलाजी बच के
2: के ए अब्बास ने राज कपूर की चर्चित फिल्मों में से जागते रहो, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हेना फिल्में लिखी।

ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम कभी रुकी नहीं। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो मुंबई के लोकप्रिय अखबारों ब्रिट्स और क्रॉनिकल के लिए कॉलम लिखते रहे। 1 जून 1987 को 72 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया।

0: लेखक निर्देशक पटकथाकार उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर था अमरकांत का, प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब इजाजत दीजिए, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

श्रोताओं आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम एंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम शक्ति मंच।

शक्तिमान सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी हेमलता का नमस्कार। सखियों, आज हमारे शक्तिमंच कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का महिलाएं कैसे ध्यान रखें। इसके अलावा रक्तपान, रक्तदान, महादान पर भी हम चर्चा करेंगे। सखियों, महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है, अत्यधिक जिम्मेदारियों और सामाजिक दबावों के बीच महिलाओं को खुद के लिए समय निकालना, सीमाएं तय करना और संतुलित जीवन शैली अपनाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत और तनाव मुक्त रखने के लिए महिलाएं इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं। जैसे स्वयं की देखभाल को महिलाएं प्राथमिकता दे सकती हैं, खुद के लिए रोजाना 15 से 20 मिनट निकालें जिसमें आप अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकें, संगीत सुन सकें या कोई आपकी मनपसंद हॉबी है उसे अपनाएं और ना कहना सीखें। अत्यधिक काम और पारिवारिक दबावों के बीच सीमाएं तय करना जरूरी है। हर बात पर हाँ कहने से बचें। रोजाना 30 मिनट की सैर, योग या हल्का व्यायाम मूड को बेहतर बनाने वाले हार्मोन रिलीज करता है, इसलिए रोजाना सैर करें, योगा करें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें। हरी सब्जियां, नट्स और साबुत अनाज से भरपूर डाइट दिमाग को ऊर्जा देती हैं। कैफीन और शराब जैसे पेय पदार्थों का सेवन कम से कम करें, ना करें बल्कि पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7 या 9 घंटे की अच्छी नींद भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्पष्टता के लिए ज़रूरी है। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन या फोन से दूरी बनाएं, इससे आप बेहतर नींद ले पाएंगी। ध्यान अपनाएं, दिन में कुछ समय निकालकर गहरी सांस लेने के अभ्यास या ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी इससे, और आपकी चिंता भी इससे कम होगी। इसलिए ध्यान या योगा अवश्य करें, बातचीत करें और सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने मन की बातें अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आप अभिभूत महसूस करती हैं तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करने में संकोच ना करें। यहाँ हम सुनेंगे एक गीत और उसके पश्चात आप सुनेंगे एक संदेश।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: सखियों, रक्तदान और अंगदान जीवन बचाने के सबसे महान कार्यों में से है। रक्तदान से जरूरतमंदों को नया जीवन मिलता है, डोनर के दिल का स्वास्थ्य बेहतर होता है, वजन नियंत्रित रहता है और मुफ्त स्वास्थ्य जांच हो जाती है। अंगदान मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति के अंगों जैसे किडनी, लीवर, आंखें, इनके माध्यम से 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान के क्या फ़ायदे हैं? रक्तदान के फायदों में जीवन रक्षण का ये काम करता है। एक यूनिट रक्त से कई मरीजों, दुर्घटना पीड़ितों, थैलीसीमिया रोगियों और कैंसर मरीजों की जान बचाई जा सकती है। डोनर के लिए शारीरिक लाभ क्या हैं? इसके लिए इसे दिल की सेहत अच्छी रहती है। नियमित रक्तदान से शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। दान के बाद बोन मैरो नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो शरीर को सक्रिय रखता है। इससे कैलोरी बर्न होती है। एक बार रक्त दान करने से शरीर में लगभग 650 तक कैलोरी खर्च होती है। फ्री हेल्थ चेकअप, दान से पहले हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और पल्स की जांच होती है, साथ ही HIV और हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों का भी मुफ्त परीक्षण होता है। अब आइए सुनते हैं एक और गीत।

सखियों, अंगदान किसी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान देने और किसी के परिवार को खुशियां लौटाने का सबसे बड़ा माध्यम है। एक मृत व्यक्ति अपने अंगों से कम 8 लोगों की जान बचा सकता है, इसीलिए इसे महादान कहा जा सकता है। जीवन रक्षण और जीवन शैली में सुधार। कई असाध्य बीमारियों जैसे लीवर फेलियर, किडनी की खराबी या हृदय रोग से जूझ रहे मरीजों के लिए अंग प्रत्यारोपण ही एकमात्र विकल्प होता है। अंगदान मिलने से न केवल मरीज की जान बचती है, बल्कि वह सामान्य और स्वस्थ जीवन भी जी सकता है। भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग अंगों की अनुपलब्धता पर समय पर अंग प्रत्यारोपण न हो पाने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। दान किए गए अंगों जैसे किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े का सही समय पर मिलना इन आंकड़ों को कम कर सकता है। अंगदान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने निधन के बाद किसी और के शरीर में धड़कते हुए हृदय या अन्य अंगों के रूप में जीवित रह सकता है। यह एक व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद भी दुनिया में एक सकारात्मक और अमिट छाप छोड़ने का अवसर देता है। अंगदान 2 तरह से हो सकता है। जीवित अंगदान, एक जीवित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति, परिवार का सदस्य या कोई अन्य, अपनी एक किडनी या लीवर का कुछ हिस्सा दान कर सकता है। मृत्यु के बाद अंगदान, ब्रेन डेड या ICU में मृत घोषित किए गए व्यक्ति के स्वस्थ अंगों और उत्तकों को परिवार की सहमति से दान किया जाता है। इसके अलावा हृदय गति रुकने के बाद कॉर्निया, आँखें और त्वचा भी दान की जा सकती हैं। अंगदान को लेकर समाज में फैले कई तरह की भ्रांतियां हैं, इन्हें दूर करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक रूप से अंगों को निकालने से शरीर में कोई विकृति या विरूपता नहीं आती है, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा बहुत ही सावधानी से की जाती है। यदि आप अंगदान करने या इसके लिए पंजीकरण की सोच रहे हैं, तो आप इस नए काम की शुरुआत राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन की वेबसाइट पर जाकर डोनर पंजीकरण कर सकते हैं। यदि आप अंगदान के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो आप इंटरनेट पर यह जानकारी ले सकते हैं। क्या आप जीवित या मृत्यु के पश्चात अंगदान की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सरकारी अस्पताल में जाकर भी। अब यहाँ सुन लेते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

सखियों, गर्मी ने प्रचंड रूप ले लिया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में हीट वेव से बचना बेहद ज़रूरी है, शरीर को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। चिलचिलाती धूप से हमें अपना बचाव कैसे करना है, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, खूब पानी पिएं, प्यास लगे ना लगे थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पीते रहें। उसमें आप नींबू या आप मनपसंद आप पेय पदार्थ उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़े फलों का जूस बना सकते हैं। ऐसे में पानी की कमी नहीं होगी, पानी से पर्याप्त, जिन फ्रूट्स में पानी पर्याप्त मात्रा में होता है ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। बच्चों का बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, सिर्फ सादा पानी पीने के बजाय नींबू पानी, ओआरएस, नारियल पानी या छाछ का सेवन करें, ताकि पसीने के से निकलने वाले पदार्थों में जैसे नमक और खनिजों की उनकी पूर्ति हो सकती है। इससे हल्का भोजन लें, इस समय हमें दलिया, खिचड़ी, चावल जैसे खाना चाहिए। मौसमी फल, तरबूज, खरबूजा, खीरा खाएं, भारी तले भुने और बासी खाने से बचें, नशीले पदार्थों से बचें, शराब, चाय, कॉफ़ी, चाय, चीनी वाले पेय पदार्थों से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। बाहरी पेय पदार्थों का कम से कम इस्तेमाल करें। धूप से बचाव के लिए सही कपड़ों का चुनाव भी बेहद ज़रूरी होता है। हल्के रंग के ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनें। बाहर निकलते समय छतरी, टोपी या सूती गमछे का इस्तेमाल करें। धूप से बचाव के लिए सनग्लासेस ज़रूर पहनें। नंगे पैर बाहर ना जाएं। बाहर निकलते समय जूते या चप्पल पहनना सुनिश्चित करें। दिन के समय खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखें। मोटे या सन ब्लॉक पर्दों का इस्तेमाल करें। शाम या रात में जब बाहर का तापमान कम हो तो खिड़कियां खोलकर ताज़ी हवा आने दें। ठंडे पानी से एक या दो बार स्नान अवश्य करें। घर आने के बाद तुरंत नहाएं, शरीर का तापमान सामान्य होने दें, फिर ठंडे पानी से स्नान करें या गीले तौलिए से शरीर को पोंछें। बच्चों और पालतू जानवरों का भी इस समय ध्यान रखना जरूरी है। धूप में खड़ी गाड़ियों में बच्चों या पालतू जानवरों को कभी भी अकेला न छोड़ें। यदि किसी को बेहद ज़्यादा चक्कर आना, सिरदर्द, उल्टी या अत्यधिक कमजोरी हो तो उन्हें ठंडी जगह पर लेटा दें, शरीर पर ठंडा पानी डालें और पंखे की हवा दें। स्थिति गंभीर होने पर उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। इसी के साथ अब अपनी रेडियो सखी हेमलता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम शक्ति मंच हेमलता के साथ FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा।

0: सब बच्चे मिलकर बोलेंगे
1: बाल सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को, स्टूडियो में आए प्यारे प्यारे बच्चों को और जो बच्चे हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमारे पास स्टूडियो में बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे भी आए हुए हैं तो इन सब बच्चों से भी हम बात कर लेते हैं। ये स्टूडियो में हमारे पास प्यारा सा छोटा सा बच्चा दक्ष आया हुआ है, देखते हैं ये हमें क्या सुनाना चाहता है। दक्ष, स्वागत है आपका आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में, सुनाइए अपनी रचना।
2: मेरा नाम दक्ष है, मैं केजी क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक पोएम सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी। हाथ जोड़ कर करो प्रणाम, अमर रहेगा इनका नाम। मोहनदास करमचंद गांधी कहते इन्हें महात्मा गांधी। भारत को आजाद कराया, अंग्रेजों को मार भगाया।
1: बहुत ही सुंदर सी ये रचना थी।
0: और अब चलते हैं हम अगले कलाकार की तरफ, देखते हैं इसके पिटारे में से क्या निकलता है। क्या नाम है आपका?
3: आयान।
0: आयान, आयान आप क्या सुनाएंगे आज हमें?
3: पर्यावरण।
0: पर्यावरण पर कविता सुनाएंगे या बातचीत करेंगे, क्या सुनाएंगे आप?
3: एक कविता।
0: कविता सुनाएंगे तो सुनाइए।
4: पर्यावरण को बचाना हमारा ध्येय हो, सबके पास इसके लिए समय हो। पर्यावरण अगर नहीं रहेगा सुरक्षित, हो जाएगा सब कुछ दूषित। भले ही आप पेड़ लगाए एक, पूरी तरह करे उनकी देख रेख। सौर ऊर्जा का करे सब उपयोग, कम करे विद्युत का उपभोग। रासायनिक खाद का कम करे छिड़काव, भूमि को प्रदूषित होने से बचाव। फैक्ट्रियों में जब सौर यंत्र लगाई जाएंगी, वायु प्रदूषण में अपने आप कमी आएंगी। तब जाकर पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएंगी, आधी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। धन्यवाद।
0: हो जाए भाई सुंदर सी कविता के लिए। तो पर्यावरण से संबंधित ये बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण अगर हमारा प्रदूषित होगा तो ये बताइए उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। किस बच्चे को पता है उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, बताइए आप बताइए।
5: अनेक बीमारियां हो सकती हैं।
0: अनेक बीमारियां हो सकती हैं, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। और इसके लिए अगर हमारे बच्चे जागरूक होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे अगर जागरूक होंगे तो वो अपने माता पिता को, अड़ोस पड़ोस को, सभी को जागरूक कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों को आगे आकर पहल करनी जरूरी है। बच्चों की एक पहल होगी तो हमारे पूरे देश में इसका एक अभियान फैलता चला जाएगा। और ये बताइए कि पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बताइए।
6: अनेक पेड़ लगा सकते हैं।
0: बहुत ही सही जवाब आपने दिया, अनेक पेड़ लगा सकते हैं। तो आप में से कौन कौन बच्चा है जो पेड़ लगाता है? अरे वाह, ये तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पेड़ लगाते हैं। उनकी देखरेख भी करते हैं अच्छे से?
7: जी दीदी।
0: सुबह शाम पानी देते हैं पेड़ों को?
7: जी दीदी।
0: बहुत ही अच्छी बात है। और पेड़ों को बढ़ता हुआ देखकर, फलता फूलता देखकर आपके मन में भी प्रसन्नता जरूर होती होगी?
7: जी दीदी।
0: और फूल अगर आप घर में लगाते हैं तो फूल खिलते हुए देखकर आपका मन भी वैसा ही खिल जाता होगा, क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना?
7: जी दीदी।
0: इसी तरह से हमारा जो ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण की तो बातचीत हमने कर ली, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, सभी तरह के जितने भी प्रदूषण हैं ये सभी हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। ये सभी हमें किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अगर ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कई लोग माइक जोर जोर से लगाते हैं, लगा लेते हैं ना जोर जोर से माइक?
7: जी जी जी।
0: और ये माइक आप क्या सोचते हैं कि लगाना चाहिए इतनी जोर जोर से?
7: नहीं जी जी।
0: क्योंकि इससे किसी किसी बच्चे को या कहीं कहीं पर अगर हम देखें कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें तकलीफ होती है, कान की बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, कान में सुनाई देना बंद हो जाता है उन्हें, और भी तरह तरह की जो हमारी बीमारियां हैं वो उन्हें लग जाती हैं। इसी तरह से जो वायु प्रदूषण है उससे हमें स्किन की बीमारियां भी हो जाती हैं। और इसी तरह से जल प्रदूषण से, आप देखिए जल प्रदूषण होने की वजह से कितने सारे जो हमारे जो जलचर हैं, जलचर समझते हैं ना आप, जो जीव जंतु पानी में रहते हैं, उन्हें अगर हमारा जल प्रदूषित होगा तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं और यहाँ तक कि वो मर भी सकते हैं। जल प्रदूषित होने से, क्योंकि जल ही उनका घर है और अगर उनका घर ही साफ सुथरा नहीं हम रहने देंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे ज्यादा देर तक। तो चलिए, बहुत सारी बात हो गई हमारी पर्यावरण से संबंधित
1: और अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
8: दीदी, मेरा नाम गीतांशी है। आज मैं आपको पर्यावरण पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। धरती पर हरियाली हो, जीवन की खुशहाली हो, पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे, आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ लगाकर जगमगाएं हम, जीवन सुखी बनाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारी कविता।
1: और अब हमारे पास स्टूडियो में एक और छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई हुई है।
9: दीदी, मेरा नाम जिंदा है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। देखो सूरज नित्य नियम से किरणों से नहलाता है, और चांद भी नील गगन से शीतलता पहुंचाता है। नदियां भी इठलाकर कहती, चाहे पी लो जितना पानी, और बांटती धरती माता हर खेत को चूना धानी। मीठे फल और छाया देने पेड़ सदा झुक जाते हैं, बादल भी लाकर के पानी सबकी प्यास बुझाते हैं। परोपकार का जीवन इनका सचमुच बड़ा महान है, खुशियाँ बांटे सारे जग को वही सच्चा इंसान है।
1: और अब हमारे पास स्टूडियो में एक और छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई हुई है, अनन्या, जो कि हमें कैसियो पर धुन निकाल कर सुनाएंगी। तो स्वागत है अनन्या आपका आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में। सुनाइए, आप कैसियो पर कौन सी धुन हमें सुनाने वाली हैं?

0: अरे वाह, आपने तो बहुत प्यारी प्यारी धुनें निकाल कर हमें सुनाई। ओम भूर्भुवः स्वः, फिर सारे जहां से अच्छा, बहुत ही प्यारी धुनें थी अनन्या। और अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
1: आरव।
0: आरव, बहुत ही अच्छा नाम है आरव। और ये बताइए, आज आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को और स्टूडियो में आए बच्चों को क्या सुनाएंगे?
1: कविता।
0: कविता सुनाएंगे, तो स्वागत है आपकी कविता का, सुनाइए।
1: आल पिन के सिर होता पर बाल नहीं होता है एक, कुर्सी के हैं टांगे मगर फुटबॉल नहीं सकती है फेंक, कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती खाना, गला सुराही का है पतला किंतु ना गा सकती गाना, जूते के हैं जी मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है, आंखें रहते हुए नारियल कभी ना कुछ लग सकता है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता है सबसे काम इसलिए सबसे बढ़कर वह पाता है दुनिया में नाम।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारी कविता, बहुत ही सुंदर कविता आरव आपने हमें सुनाई कि मनुष्य के पास तो बहुत कुछ है इसीलिए दुनिया में उसका नाम भी होता है। लेकिन देखो कितने अच्छे उदाहरण देके इन्होंने समझाया कि नारियल की आंखें तो हैं लेकिन वो देख नहीं सकता, और इसी तरह से सुराही का पतला सा गला है लेकिन वो कुछ खा नहीं सकती है, और इसी तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण देके इन्होंने अपनी कविता में हमें बहुत सी सुंदर कविता ये सुनाई है। और अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इस बच्ची का?
2: आलिया।
0: आलिया, आलिया आज आप क्या सुनाएंगी हमारे श्रोताओं को?
2: कविता।
0: कविता सुनाएंगी, सुनाइए, स्वागत है आपकी कविता का।
2: हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का, बच्चे की सुन बात कहाँ माता ने अरे सलोने, खुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मुख बड़ा, किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, भटता भटता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखाई पड़ता है, अब तू ही बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक जिंगोला जो हर रोज बदन में आए।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता। चांद का कुर्ता सिलवाने की बात यहाँ पर चली है क्योंकि चांद, आप सब बच्चों ने चांद देखते हैं, रात को चांद देखा है ना सभी ने?
3: जी दीदी।
0: बहुत अच्छी बात है, पर मुझे ये बताइए चांद कभी तो पूरा गोल होता है और कभी आधा नजर आता है और कभी बिल्कुल पतला सा छोटा सा नजर आता है, तो ऐसा क्यों होता है, कौन बताएगा मुझे? बताइए बताइए, चांद का घटता बढ़ता आकार किस वजह से होता है?
4: जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है उसी तरफ से ही चांद दिखता
0: है। क्या बात है, काफी हद तक आपका उत्तर सही था, तो थोड़े से और जब बड़े हो जाएंगे तो आपकी जो किताबें हैं वो भी इसके बारे में आपको ज्ञान देंगी, फिलहाल तो आप इतना ही समझ लीजिए कि जब पूरा चंद्रमा होता है तब क्या होता है, पूर्णमासी होती है, और जब चंद्रमा बिल्कुल जिस दिन दिखाई नहीं देता उस दिन अमावस्या होती है, और चांद के घटते बढ़ते आकार की वजह से उसका जो कुर्ता है उसको सिलवाने में दिक्कत आ रही है। तो प्रश्न हमने ये पूछा था कि चांद का घटता और बढ़ता आकार क्यों होता है, तो ये इस वजह से है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है और जो चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो कुछ इस तरह का हमारा ये सारी व्यवस्था है जो परमात्मा ने की है, या इसे आप ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तौर पर कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है कि हमें चांद घटता और बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चांद घटता या बढ़ता नहीं है, चांद का आकार एक ही रहता है, वो हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है क्योंकि वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है और धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो कहीं पर रोशनी होती है और कहीं पर नहीं, ये सब अगर मैं अभी आपको समझाऊंगी तो बहुत सारा वक्त इसी में बीत जाएगा, तो इसलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले नन्हे मुन्ने कलाकार की तरफ। क्या नाम है इस बच्चे का?
5: लावण्या।
0: क्या सुनाएंगी आप?
5: एक कविता।
0: कविता सुनाएंगी, तो स्वागत है आपकी कविता का।
5: जिंदगी है छोटी हर पल में खुश हूँ,
2: काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, आज पनीर नहीं दाल में ही खुश हूँ, आज गाड़ी नहीं पैदल ही खुश हूँ, आज कोई नाराज है उसके इस इंतजार में ही खुश हूँ, जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज से ही खुश हूँ, जिसको पा नहीं सकता उसको सोच कर ही खुश हूँ, बीता हुआ कल जा चुका है उसकी मीठी याद में ही खुश हूँ, आने वाले कल का पता नहीं इस इंतजार में ही खुश हूँ, हंसता हुआ बीत रहा है पल आज मैं भी खुश हूँ, जिंदगी है छोटी हर पल में खुश हूँ, अगर दिल को छुआ तो जवाब देना, वरना बिना जवाब के भी खुश हूँ, वरना बिना जवाब के भी खुश हूँ। धन्यवाद।
0: हो जाए भाई एक बार जोरदार। बहुत ही सुंदर कविता की, हर हाल में इंसान को खुश रहना आना चाहिए, खुशी इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तभी आप सारे काम खुशी खुशी कर पाएंगे, और उन्हीं कामों में सफलता मिलती है, उन्हीं कार्यों में सफलता मिलती है जो काम हम खुशी से करते हैं। तो सफलता हासिल करने के लिए भी हमारा खुश रहना बहुत जरूरी है। और अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अगले नन्हे मुन्ने बच्चे की तरफ। क्या नाम है इस बच्चे का?
1: लवित।
0: लवित, बहुत ही अच्छा नाम है लवित। और आज आप हमें सुनाएंगे क्या?
1: पोयम।
0: कविता सुनाएंगे आप ही, तो स्वागत है आपकी कविता का। कविता का शीर्षक क्या है?
1: सीखो।
0: सीखो, अच्छा, तो लगता है बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें भी और हमारे श्रोताओं को भी सिखाने वाले हैं, तो सिखाइए हमें अच्छी अच्छी बातें अपनी कविता के माध्यम से।
1: फूलों से नित हंसना सीखो, भोरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव जगाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना।
0: बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही प्यारी आपने कविता सुनाई हमें। आपने ये कहा कि हर चीज से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, फूलों की बात करें तो फूलों से हंसना सीख सकते हैं, सूर्य की किरणों से भी हम जगना और जगाना सीख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी आपने हमें बातें सिखाई कि हर चीज़ दुनिया में जो है उसे अगर हम देखें और ध्यानपूर्वक अगर देखें तो सभी से कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। अब चलते हैं अगली कलाकारा की तरफ। क्या नाम है इस बच्ची का?
4: इशिता।
0: आप क्या सुनाएंगी आज हमें?
4: पहेलियाँ।
0: पहेलियाँ बूझेंगी, तो सब बच्चे बूझने के लिए तैयार पहेलियाँ?
3: जी दीदी।
0: चलिए देखते हैं कि इशिता कौन सी पहेलियाँ लेकर आई हैं।
4: एक हरा घर, घर के अंदर सफेद घर, सफेद घर के अंदर लाल घर, लाल घर के अंदर काले बच्चे, तो बताओ क्या?
0: हरा घर, सफेद घर, लाल, भाई बहुत सारे घर बना दिए आपने तो। चलिए देखते हैं कि इसका जवाब किसे आता है। इस

0: जवाब इस बच्ची को आता है, क्या जवाब है इसका?
1: तरबूज।
0: तरबूज सही जवाब है ईशिता
1: जी। दीदी
0: तो सही जवाब के लिए तालियां हो जाएं। और अब चलते हैं अगले कलाकार की तरफ। या आपकी पहेलियां और भी हैं?
1: और भी हैं
0: पहेलियां इस कार्यक्रम में, तो बुझिए।
1: एक ऐसा रूम जिसका ना खिड़की ना दरवाजा, बताओ क्या?
0: एक ऐसा कमरा जिसका ना खिड़की ना दरवाजा, क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, बताइए, आप बताइए।
1: मशरूम।
0: मशरूम सही जवाब है
1: जी दीदी।
0: तो एक बार सही जवाब के लिए भाई जोरदार तालियां बनती हैं। अब अगली पहेली के लिए सब बच्चे तैयार?
2: जी दीदी।
0: चलिए देखते हैं कि क्या है अगली पहेली।
1: लड़की नहीं पर पर्स इस्तेमाल करता है, पुजारी नहीं पर घंटी बजाता है, बताओ कौन?
0: भाई ये पहेली तो मुझे लगता है किसी को भी नहीं आती, आप ही इसका जवाब हमें दे दीजिए।
1: बस कंडक्टर।
0: बस कंडक्टर, तो एक बार तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए। और अगली पहेली के साथ तैयार?
1: जी दीदी।
0: और हमारे सुनने वाले बच्चे भी तैयार?
2: जी दीदी।
0: बूझने के लिए तैयार?
2: जी दीदी।
0: हम भी तैयार और इशिता भी तैयार, बच्चे भी तैयार, चलिए बूझिए अपनी पहेली।
1: हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान, बताओ क्या?
0: हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान, तो देखते हैं क्या सही जवाब है इसका। आपको आता है शायद से, बताइए। लाल मिर्च सही जवाब है
1: जी दीदी।
0: तालियां हो जाए भाई। बहुत ही अच्छे से पहेलियां बुझी जा रही हैं और कार्यक्रम आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। हाँ जी, अगली पहेली।
1: एक गुफा के दो रखवाले, दोनों लंबे दोनों काले।
0: दो रखवाले दोनों लंबे, किसे आता है? लगता है इस बच्चे को जवाब आता है। हाँ जी, क्या जवाब है?
1: मूछे।
0: मूछे सही जवाब है
1: जी दीदी।
0: तालियां हो जाए भाई सही जवाब के लिए। अगली और अंतिम पहेली बुझिए।
1: ऐसी कौन सी चीज है जो अधिक ठंड में भी पिघलती नहीं?
0: अधिक ठंड में भी पिघलती नहीं। हाँ जी, आपको शायद इसका जवाब आता है, बताइए इसका जवाब क्या है?
2: चांद।
0: भाई सही जवाब है इशिता?
1: नहीं दीदी,
0: चांद नहीं जवाब, ये सही निकला। और अब देखते हैं, आपको आता है सही जवाब? नहीं, आपको नहीं आता। सोचिए, आपको आता है इसका सही जवाब?
1: जी दीदी।
0: हाँ जी, दीजिए सही जवाब क्या है?
1: मोमबत्ती।
0: मोमबत्ती सही जवाब है
1: जी दीदी।
0: तो तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। और अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इस बच्चे का?
3: भूमिक।
0: भूमिक, भूमिक बड़ा ही प्यारा नाम है आपका, तो आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
3: कविता।
0: तो सुनाइए, स्वागत है आपकी कविता का भूमिक।
3: सुनो सुनो, गौर से सुनो, अरे

0: बजाओ ताली।
1: हाँ बजाओ ताली भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी हास्य कविता आपने हमें सुनाई और सभी बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और अभी तक सभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान है। भूमिक, बहुत ही सुंदर आपने कविता सुनाई। तो भाई बहुत ही प्यारा और सबसे छोटा बच्चा भूमिक, इसने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भूमिक के लिए। तो चलते हैं अगली नन्नी कलाकारा की तरफ। क्या नाम है इस बच्ची का?
0: हंसिका।
1: हंसिका भाई, हंसिका तो बहुत ही प्यारा सा नाम है। क्या सुनाएंगी आज आप हमें?
0: आंधी आई जोर जोर।
1: कविता सुनाएंगी आप हमें?
0: हाँ जी।
1: तो सुनाइए, स्वागत है आपकी कविता का।

0: भाई बहुत ही जोर से आपने तालियां बजाई, तो मुझे लगता है सभी को देशगान पसंद आया। पसंद आया?
1: जी दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, और अब चलते हैं अगले नन्हे मुन्ने कलाकार की तरफ। क्या नाम है इसका?
2: दिया।
0: दिया, बड़ा प्यारा नाम है दिया आपका। आप क्या सुनाएंगी हमें?
2: कविता।
0: कविता सुनाएंगी तो सुनाइए।
2: पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहते हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तिरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर लुम्बम। पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। धन्यवाद।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता। तो बहुत ही अच्छी कविता हमें दिया ने ये सुनाई, और ये हमें जो प्रकृति के अंदर जो वस्तुएं हैं, जो प्रकृति हमें एक संदेश देती है, एक छिपा हुआ संदेश है प्रकृति में, वो संदेश इन्होंने हम सबको कविता के माध्यम से सुनाया। जैसे इन्होंने कहा कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। भाई पर्वत जो है वो हमें एक संदेश देता है कि हर इंसान शीश उठाकर जीना सीखे और जिए और ऊंचा जिंदगी में उठता चला जाए। इसी तरह से आकाश भी हमें एक संदेश देता है कि जिस तरह से मैं इतना बड़ा हूँ, अंबर आपने देखा है ना, नीला अंबर कितना बड़ा अंबर है, वो फैला हुआ अंबर है, वो भी हमें संदेश देता है कि इतना ही फैलकर और इतनी ही दूर दूर तक आपकी प्रसिद्धि और ख्याति फैल जानी चाहिए। जब आप बड़े हो जाओ तो कुछ इस तरह के काम करो कि आपकी प्रसिद्धि आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाए। और अब चलते हैं अगली कलाकारा की तरफ। क्या नाम है इसका?
3: मुनीरा।
0: मुनीरा, तो मुनीरा आप क्या सुनाएंगी?
3: कहानी।
0: कहानी सुनाएंगी तो सुनाइए, स्वागत है आपकी कहानी का।
3: एक व्याकरण का पंडित नाव में बैठा था। उसने मलहा से व्याकरण की बड़ी प्रशंसा की और फिर उससे पूछा, क्यों भाई क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है?

0: बेचारा मल्हा व्याकरण क्या जाने, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। उसने कहा, पंडित जी हम नहीं जानते कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण के पंडित ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुमने अपनी अब तक की उम्र यूं ही गवा दी। मल्हा को ये सुनकर बड़ा बुरा लगा, लेकिन वह कुछ ना बोला। संयोग की बात है कि उस समय बड़े जोर का तूफान आया, नाव ऊपर नीचे होने लगी। मल्हा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी महाराज ये तो बताइए कि आपको तैरना आता है या नहीं। उन्होंने कहा, नहीं तैरना तो मुझे नहीं आता। मल्हा ने कहा, महाराज अब तो आपकी सारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, क्योंकि नाव भंवर में पड़ गई है और डूबने वाली है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी कला पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए।
1: बहुत ही सुंदर कहानी और बहुत ही अच्छा संदेश देती हुई कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कला पर या अपने गुण पर, क्वालिटीज हैं उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। और बहुत ही अच्छे तरह से आपने अपने भाव व्यक्त किए इस कहानी के माध्यम से। और मुझे लगता है इस कहानी के साथ ही अब हमें वक्त कह रहा है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो सब बच्चे मिलकर बोलेंगे।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो FM। इस कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं 0744 लगाकर 221-322, यही वो नंबर है जिसे आप सीधा आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्टूडियो से जुड़ेंगे, अपनी फरमाइशें पूरी करवाएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: पिटारा में आज
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, इस अंक में आज हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश आपके लिए लेकर आए हैं। आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुई इस विविध लोकरंगी संध्या में प्रतिभागी कलाकार थे डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, ममता वर्मा और नरोत्तम बेन। सहभागी कलाकार थे तबला पर शशांक नीलेश प्रभु, हारमोनियम पर सिद्धार्थ मेस्ता, ढोलक पर सुधीर जंगम और सहवाद्य पर थे जयंत पात्रिकर। इस विविध रंगी लोक संगीत संध्या में नगर सेवक शिवा शेट्टी, निदेशक अभियांत्रिकी राजेश बेलदार, सहायक कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर संतोष जाधव, विविध भारती के अधिकारी व कर्मचारी और जाने माने साहित्यकार कलाकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया ममता सिंह और यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुए लोकरंग कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर है और इस मौके पर विविध भारती के सृजन भारती के अंतर्गत हमने लोक रंग का आयोजन किया है। लोक रंग के जरिए आप ये देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों का जो संगीत है उसके भीतर एक अंतरधारा है जो हम सबको आपस में जोड़ती है और जो ये दिखाती है कि भारत विविधता में एकता का देश है। तो आज के इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और देश के अलग अलग राज्यों के लोक संगीत की बेमिसाल प्रस्तुति के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। ये सृजन भारती का लोक रंग क्या कार्यक्रम है, इसका परिचय देने के लिए मैं विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर संतोष जाधव को आमंत्रित कर रहा हूँ।
2: नमस्कार, आज के इस महफिल में सारे कलाकार और उपस्थित सभी संगीत प्रेमी, रेडियो प्रेमी, विविध भारती प्रेमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी भारत की गौरवशाली प्रसारण परंपरा की एक प्रतीक है। आकाशवाणी ने अपनी 90 बरस की प्रेरणादायी अविस्मरणीय यात्रा पूर्ण की है। इस 90 बरस में आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। इस गौरवशाली स्मरणोत्सव के अंतर्गत विविध भारती द्वारा इस लोक रंग महफिल का आयोजन किया गया है। इस महफिल में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत और लोक धुनों में हमारी मिट्टी की खुशबू है। सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस मंच पर उपस्थित कलाकार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से लोक संगीत पेश करेंगे। तो आइए लोक रंग की इस सुरमई शाम में हम शामिल होते हैं। आकाशवाणी के 90 बरस की एक गौरवशाली यात्रा को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा, भारत की जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, भारत के जितने लोगों तक पहुंचता है पानी, उनसे भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है आकाशवाणी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष यादव। और अब अतिथियों के स्वागत की बारी है। आज के इस कार्यक्रम में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग पुष्प गुच्छ के जरिए स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं पर पौधा कायम रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो कलाकार मौजूद हैं, एक एक करके मैं उनका जल्दी से परिचय देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव माननीय राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं। बीते बरस वे पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा माटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार हैं। 20 से ज्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं, जिनमें कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास और लोक कथा संग्रह शामिल हैं। वे एक सक्रिय थिएटर और फिल्म कलाकार हैं। लाडली मीडिया सम्मान और नेमी चंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं। मोहन राकेश सम्मान, इंडियन ऑयल वीमेन अचीवर सम्मान उन्हें मिल चुका है। लाल कप्तान, शमशेरा, महारानी, माँ जैसी फिल्में और वेब सीरीज उन्होंने की हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं मधुबन की मुनिया, प्रेग्नेंट फादर, दूसरा आदमी, पीर पराई, आवतनिक प्रेम करें, अगले जन्म मोहे, बिटिया ना कीजो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया था। प्राध्यापक प्रशांत मोरे एक बहुत मशहूर लोक कवि हैं। कथा, तिच्चा, लग्नाची और स्पर्श जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, गाए हैं और स्वरबद्ध किए हैं। हिंदी, उर्दू, मराठी मुशायरे में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व प्रशांत जी ने किया है। आईचा कविता नाम की उनकी प्रस्तुति के भारत भर में 5600 शो हो चुके हैं, कमाल का रिकॉर्ड। नामदेव ढसाल पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार हैं। उनकी कृतियां हैं वेदना, सातारकर, कबीरांची दीन, माय अर्थात आईची कविता, खंड एक और खंड दो, अभिवादन बा भीम। नरोत्तम बेन विगत 33 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहे हैं। जबलपुर से रंगकर्म की शुरुआत की थी और इस वक्त मुंबई में भी रंगकर्म जारी है। एक नाटक की रिहर्सल से सीधे इस मंच पर पदार्पण किया है उन्होंने। अभिनय कार्यशालाओं का संचालन करते हैं, कई नाटकों का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा महेश्वर में सन 1994 में आयोजित अभिनय कार्यशाला में अभिनेता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई विज्ञापनों, धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है और बुंदेली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। नरोत्तम बेन यहां बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। ममता वर्मा बागेश्वर उत्तराखंड में पैदा हुई, 2021 से मुंबई आई हैं और कई सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने प्रस्तुति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार विविध भारती के लिए वो मंच पर गीत प्रस्तुतियां करने वाली हैं। तो ममता का बहुत हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हमारे कलाकार हैं और इसके अलावा बहुत ही काबिल कलाकार हारमोनियम, तबला और ढोलक पर मौजूद हैं और इसके अलावा डफ और घुंघरू जैसे सहायक वाद्यों पर मेरे अपने साथी विविध भारती के मशहूर उद्घोषक जयंत पात्रीकर साथ देंगे। तो ये हमारा जमावड़ा है और इस कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह करेंगी। तो आइए ममता सिंह, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
3: सभी अतिथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत। आज की जो संध्या समर्पित है हमारे मिट्टी की उस मीठी खुशबू को, जो लोकगीतों की स्वर लहरियों में बसती है। लोकगीत यानी हमारी परंपराओं की धड़कन, हमारे गांवों की मुस्कान, माँ की लोरी, खेतों की गूंज, त्योहारों की रौनक और रिश्तों की मिठास। जब लोकगीत गूंजते हैं तो सिर्फ सुर नहीं बजते। तो चलिए फिर इस रंगारंग संध्या में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुरों का जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ते आए हैं। लोकगीत में पूरी परंपरा है, पूरी संस्कृति है, रिश्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विदुषी शैलेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में। जरा जोरदार तालियों से स्वागत। वैसे तो देश के सभी राज्य में लोकगीत की अलग परंपरा है, अलग छटा है, अलग रंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोकगीत एक खास रंग लिए होता है, क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की परंपरा रही। विवाह गीत जब गाते हैं तो उससे पहले देवी गीत गाते हैं। तो माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं।
4: आप सभी के हमार प्रणाम स्वीकार करें। अपने माटी की सेवा खातिर यहाँ बुलावल गई है आज। विविध भारती ने याद किया है अपने लोक रंग त्रिजन भारती की श्रृंखला में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आकाशवाणी की अहम भूमिका है। मुझे गढ़ने में हर समय मुझे आकाशवाणी ने एक सर्वोत्तम मंच दिया और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। तो सरस्वती का हम लोग यहाँ भोग में सुरस्वती कहीं लजा, तब सुनावत है आप सबके
3: सरस्वती मैया की जय।
4: हाँ।

0: क्या बात है।
1: जाने माने सभी जो उपस्थित गण हैं सबका मैं मंच से स्वागत करती हूँ। बहुत आभारी हूँ विविध भारती की।
0: शुक्रिया शैलेश जी। अभी यहाँ पर लोकगीतों की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है।
1: देखिए विविध भारती आपका 90 वर्ष
0: तो उस पर कुछ गा रही।
1: हाँ सुनाई गाती हूँ इतना।

0: बड़ा सुंदर अंदाज में आपने पेश किया, तो ये भी बता दीजिए कि इन मौकों पर इस ये लोकगीत गाया जाता है।
1: ये तो सोहर है, 150-200 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। जब प्रसव पीड़ा में नारी होती है तो सोहर इसका नाम ही है। तो इसके स्वर ऐसे हैं कि जिनसे वो अपने सारे कष्ट को भूल जाती है, मतलब वो हर लेता है, क्योंकि म्यूजिक और स्वर जो ईश्वर तक जाने का इतना एक सहज माध्यम, इसीलिए माना गया है कि इसके जो भाव हैं, इसके जो लगाव हैं सुरों के, वो ऐसे होते हैं कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं।
0: तो अब लोकगीत का कौन सा वाला रंग छेड़ रही हैं, जिस रंग में हम अभिभूत होने जा रहे हैं?
1: अब देखिए, मैं तो बलिया की हूँ, बागी बलिया, और वहाँ की मैं पहली गायिका महिला कलाकार हूँ, बलिया की पहली जी, महिला गायिका कलाकार हूँ। तो कितनी सारी वहाँ पे मुझे हमारे शब्दों में कहते ताने वगैरह भी सुनने को मिलते थे, लड़की के गवाओ तरन के ब्याह करी इनका घर के लड़की से। आज तो सब लोग, हर दूसरा घर का बच्चा या बच्ची कहता है देखिए देखिए हमारी बच्ची गा रही है, इधर देखिए कितना अच्छा गा रही है, उसको इतने सारे एक्सपोजर हैं। पर हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ तो बहुत मुश्किल था। हमारी माएँ कहती थी हम नहीं शादी करके आए हैं, इनको लड़का बना के घुमा रहे हैं, कैसे होगा इनका शादी ब्याह कायस्थ के घर में। हाँ, तो घर में ही इतनी दुविधा थी। अगर मैं बलिया से सीधे भैया बम्बई ये नहीं बतावा, यहाँ देखा था सब बदल, मेट्रो गाड़ी चल रहा है, यहाँ देख के बड़ा घबराएगा भैया कहाँ सही आए, जगह आए कि नहीं आए। अच्छा, तो देखे कि भाई अब उनके पति तो मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको साड़ी भेजे एक नहीं दुठो, मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, भरारू घूमने आ रही है, पहन के घूमो यार, लोग देखें तो देखिए वो कैसे चल रही है।

0: लगता तो बड़ी मजेदार रहल है।
1: शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है, उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश अपनी सरलता, लोक भाषा और लोक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां के लोकगीतों में खेत है, खलिहान है, पूरी संस्कृति है, परंपरा है। बाकी मैं नहीं बोलती हूँ, प्रशांत मोरे जी जो प्राध्यापक भी हैं और संगीत के बहुत जानकार हैं, संगीतकार भी हैं। तो प्रशांत मोरे जी आपको माइक दे रहे हैं, जरा महाराष्ट्र के लोक रंग के बारे में बताइए और सुनाइए, कुछ प्रस्तुति दीजिए।
2: सर्वांना नमस्कार। भाषा कळते ना, जरी भाषा कळली नाही तरी भावना कळेल, आणि भावना ह्या सगळ्याच ठिकाणी भाषा बदलतात पण भावना बदलत नाही।
0: बिलकुल
2: है क्या नाही, भाषा बदलते भावना बदलत नाही। भावना काय असते, भावना तीच असते। सैमा

0: बहुत बहुत आभार प्रशांत जी, बहुत सुंदर गाया और ऐसे लग रहा था कि भले इसमें समझ में आता है कि भाषा बोली कोई भी हो, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है कि आपको मोहित कर लेती है और झूमने पर मजबूर कर देती है। अब हम नाट्यकर्मी और गायिका और अभिनेत्री विभा रानी जी को बुला रहे हैं मंच पर। बिहार के लोकगीतों की छटा हम देखेंगे और बिहार का लोक संगीत भी बहुत समृद्ध है, वहाँ के मैथिली लोकगीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रस्तुति विभा रानी देंगी। खासतौर से एक गायन का प्रकार है झिझिया, झिझिया के बारे में बताइए विभा जी क्या होता है, और फिर वो गायन का प्रकार भी प्रस्तुत कीजिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए।
1: बिहार के उत्तरी भाग मिथिला सची मैथिली भाषा है, सृजन भारती सब कार्यक्रम में ऐठा हमरा आमंत्रित कैल गेले। हम विविध भारती के बहुत बहुत आभारी छी। हमर करियर के शुरुआते आकाशवाणी से भेल है, तो बुझाइए जे आकाशवाणी हमरा लेल नैहर माने मायका अछि। अभी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है। एक तरफ भोजपुरी की जोरदार आवाज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रणझुंझार शिवशाही। अब उसके बीच में मैथिली बड़ी मीठी मीठी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है कि लोग कहते हैं कि उसमें मैथिली में लड़ते भी हैं तो लोगों को लगता है कि प्रेम ही करते हैं।
0: क्या बात है।
1: एक बार एक कवि सम्मेलन में एक भोजपुरी के कवि और मैथिली के कवि भी बैठे हुए थे। भोजपुरी के कवि पूरी वीर रस की कविताएं सुना गए, उसके बाद मैथिली के एक कवि आए, उन्होंने प्रेम रस की कविता सुनाई, तो भोजपुरी के कवियों को भी चढ़ा कि मैं भी प्रेम कविता सुनाऊंगा, तो वो उठे और कहा हम प्रेम करब, हम प्रेम करब। तो हरिमोहन झा जी जो मैथिली के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, वो बोले वहीं से बैठे बैठे हम माहुर लौ कर मर रहब, मतलब मैं जहर खा करके मर जाऊंगा अगर ऐसा प्रेम होगा तो। तो ऐसी मीठी और ऐसी छोटी छोटी इस तरह की भाषा है मैथिली, तो आपको दोनों के बीच में जरा संतुलन बना करके चलना होगा। ममता, आपने कहा कि झिझिया, शैलेश ने अभी सुनाया था देवी गीत सरस्वती वंदना। झिझिया दशहरे के समय में गाया जाने वाला, नृत्य किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और उसमें देवी की आराधना की जाती है, दुर्गा की आराधना की जाती है और भगवती की आराधना की जाती है। भगवती के भाई हैं, भैरव ब्रह्म उनके बोलते हैं, उनकी आराधना की जाती है।

0: लोकगीतों में कहानी किस्से होते हैं, मनुहार होता है, नोकझोंक होती है, तकरार होती है, तो एक जाट और जटिन जब बात करते हैं तो उस बातचीत को लोकगीत में कैसे पिरोया जाता है, जरा बताइए विभाजी।
1: जट जटिन मिथिला का एक खेल है, ये भी एक नृत्य है और जिसे बारिश के समय में खेला जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण कहीं बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी फसल, तो जट वो चला विदेश कि हम तो परदेश जा रहे हैं। जटिन उसकी पत्नी उसको वो कह के गया कि जैसे ही तुम्हें आकाश में मेघ दिखे तुम मुझे आवाज़ देना और मैं वहाँ से आऊँगा। 12 बरस हो गए, इस बीच बारिश नहीं हुई, जट परदेश में था, कमाता रहा, जटिन के संदेश का इंतज़ार करता रहा। जटिन भी अकेली थी, वो अपने मायके चली गई। 12 साल के बाद उसने देखा कि आकाश में काले काले मेघ आए हैं, तो उसने वहीं से आवाज़ दी।

जट्टा को आवाज सुनाई, उसने वहीं से कहा, एलियोगे जट्टिन एलियो, एलियोगे जट्टिन एलियो, आयब गेलियोगे जट्टिन आयब गेलियो। और जट्टा आ गया, जटिन भी मायके से आ गया। अब जब 12 साल के बाद पति पत्नी मिले हैं तो थोड़ा सा मान मनोबल तो होगा ना। तो जटिन कहती है, तुमसे मैंने जब जब टीका मंगवाया, गहने मंगवाए, तुम कभी भी जो है ले करके नहीं आए। मेरी बाली उम्र जो है, क्योंकि बचपन में तब शादी हो जाती थी, वो बर्बाद हो गई। तो जटा भी कहता है, मैंने जब तुमको दिया तो तुम तो मायके में जाके बैठी थी, नैहर में जाके बैठी थी, तो कैसे पहनोगी। तो ये इस जट जटिन की कथा और उसके बीच ये गीत है।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है विभा जी, बहुत अच्छा आपने गाया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार विभा जी, और बहुत कम समय में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी, शुक्रिया आपका।
1: बहुत देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की, अब हम लोगों के गाने गावे की बारी है। नानू भैया बहुत ही हो गई, चलो आ जाओ अब अपनी बुंदेली को झंडा फहरावे। बुंदेलखंड की खासियत ये है कि वहां अगर आप किसी का नाम पूछें, कहे भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब आएगा तुम्हें क्या करने, मतलब नाम बताने से पहले व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि तुम्हें करना क्या है, नाम से क्या करना है। लेकिन बुंदेलखंड में बहुत प्रेम है, नरोत्तम बेन बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। तो भैया नानू भैया इसी के साथ शुरू करो आज की महफिल, फिर तुम्हारी मर्जी जो तुम गावे चाहो।
2: तो प्रणाम पहले सभी जनन को, नरमदे हर, जय महाराष्ट्र जय भारत।
3: ये बम्बुलिया और एक लमटेरा, ये बहुत ही अद्भुत चीज है बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड का सबसे फेमस फॉर्म है राई। बुंदेलखंड के फोक की आप बात करेंगे तो राई के बिना मामला अधूरा होता है। ऐसा ही ये है बम्बुलिया और लमटेरा। लमटेरा यानी लंबी टेर, लंबी टेर लंबी आवाज। तो बहुत अच्छे जानकारी लोगों के से हमें इनके बारे में मिली कि पहले क्या होता था कि लोग गांवों में रहते थे, गांवों से जाते थे, खेत के रास्ते से गुजरते थे, मेला देखने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो एक साथ निकला करते थे वो लोग। और एक बंदा कहीं बहुत दूर है, बहुत दूर है बैलगाड़ी में, उसने वहां से कुछ एक लाइन बोल दी, कुछ एक लाइन उसने गा दिया, फिर पीछे का कोई भी बंदा है जिसने सुना बैलगाड़ी पर चला रहा है तो उसकी एक लाइन सुनकर जो है उसका जवाब दिया करता था। फिर किसी और छोर पे कोई दूसरा बंदा होता था, उसने सुना, उसको जवाब सूझा, तो ऐसा फिर वो गाता था, तो उसको लमटेरा कहते थे। इसी से मिला हुआ है बम्बुलिया, वो भी लंबी लमटेरा का ही एक रूप है, उसमें देवी महिमा खासकर नर्मदा जी इन सबका जो जिक्र होता है उसके लिए मामला है। भाई चंग पैटर्न पे आप चलते चलिएगा।

0: थैंक यू.
1: वाह वाह क्या बात है.
0: धन्यवाद
1: नरोत्तम जी, बहुत बढ़िया आप गा रहे हैं. अगर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा गाया. और जोरदार तालियां नानू जी के लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि ये जो पूरी कहानी मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड की कहानी थी इनके गाने में. बहुत बहुत शुक्रिया. अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर. आमंत्रित कर रहे हैं ममता वर्मा को, जो वैसे पहाड़ों पर हम जब सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है. बर्फ़ की बारिश में भीगना बड़ा सुखद लगता है, लेकिन वहाँ का जीवन कितना कठिन है ये हम में से शायद ही कोई सोचता है. लेकिन पहाड़ों का लोकगीत बहुत ही सुंदर है, बड़ी मिठास है. भले ही आपको समझने में कठिनाई हो, लेकिन मीठी आवाज़ में ममता वर्मा बहुत बढ़िया गाती हैं. तो ममता से हम उनसे कुछ पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी भी चाहते हैं. ममता, हम आप गाए इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. हमने सुना है कि उत्तराखंड जहाँ की आप रहने वाली हैं वहाँ का जीवन काफ़ी कठिन है और कमाई का जरिया बहुत कम है. तो वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो कमाने के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं. महिलाएं अपना जीवन यापन खुद करती हैं, खेती किसानी से लेकर जो भी काम होता करती हैं, और बड़ी निडर होती हैं. तो हम ममता से पूछते हैं वहाँ के जीवन के बारे में. बताइए कि जब पुरुष घर में नहीं होते तो डर नहीं लगता है वहाँ के? जो
2: नहीं, वहाँ की महिलाएँ जो होती हैं बहुत निडर महिलाएँ होती हैं, शक्तिशाली होती हैं. कभी कभी भालू और बाघ से भी वो लड़ जाती हैं. नमस्कार, प्रणाम. पहलाद, मैं ममता वर्मा उत्तराखंड कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ. मैं आपके सामने जो गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उस गाने में ही एक लड़की और एक औरत का दुख पीड़ा जो होता है वो उस गाने में व्याख्यान किया है. ये प्रहलाद मेहरा जी ने ये गाना गाया है. एक लड़की के दुख और उसके पीड़ा, वो जो घर में काम करती है वो उस काम का व्याख्यान इस गाने में किया है.
1: तो वो गा के सुनाइए.

वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक हमने सुना है दर्शकों की ओर से फरमाइश भी आई है कि एक गाने पर आप नृत्य भी करती हैं, और वो नृत्य भी थोड़ा सा अगर आप चार लाइन भी गाते हुए सुना सकती हैं तो सुनाइए। और आपकी जो पोशाक है, वेशभूषा है, हम अपने दर्शकों को और अपने रेडियो के श्रोताओं को बता दें कि ममता वर्मा ने जो पोशाक पहनी है, बाकायदा उत्तराखंड की एक जो महिला होती है वहाँ की पोशाक पहन रखी है, जो बहुत खूबसूरत लग रही है।

0: ये थी लोक संगीत संध्या की विविध रंगी प्रस्तुति। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों ने और वहां उपस्थित दर्शकों ने मंच पर जैसे धमाल मचा दी, और इसके बाद वरिष्ठ उद्घोषक जयंत पात्रिकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
1: आखिर में दो लाइन चलत मुसाफिर मोहलियो रे, इस गाने पे सारे दर्शक खड़े होके नृत्य करेंगे और यहाँ पर मंच पर सारे कलाकार हम सब उसमें शामिल रहेंगे।
2: उड़ उड़ बैठी पनवनिया दो कनिया, पनवा के सबर सले पिंजड़े।

0: कनिया उड़ उड़ बैठी बजा जिया तो कनिया है उड़ने के सब रसले पिजड़े वाली मुनिया है उड़ने के सब रसले लियो रे पिजड़े वाली मुनिया।
1: थैंक यू विविध भारती।
2: धन्यवाद।
1: मुंह से रिदम जिन्होंने बजाया मुझे तौफीक भाई की याद आ गई। एक जोरदार तालियां।
3: शैली जी, एक कमाल की बात यह है कि साज नहीं थे लेकिन इस बीच में ये नानू और जयंत जी ने जिस तरह से बीट बॉक्सिंग की है वो बहुत कमाल का था। बहुत ही गजब।
2: विविध भारती की ओर से आयोजित सृजन भारती के इस लोकरंग कार्यक्रम में आज की इस शानदार प्रस्तुति के लिए विविध भारती परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। इस विविध रंगी शाम में शामिल होकर और उसमें नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए दिल से आप सभी का विविध भारती परिवार आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं हमारे नगर सेवक शिवा शेट्टी जी के प्रति, हरीश छेड़ा साहब अध्यक्ष बोरीवली सांस्कृतिक केंद्र, ये ऑडिटोरियम हमें उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार राजेश बेलदार जी साहब, हमारे निदेशक अभियांत्रिकी विविध भारती के, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताड़े साहब और सभी इंजीनियरिंग के साथियों का, विशेषकर मंगेश सांगड़े जी और विनायक रेणके जी, सक्रिय सहयोग देने के लिए हम उनके आभारी हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं साउंड सिस्टम के लिए डीजे जस्सी और उनकी टीम का आभार, और हमारे आज के कलाकारों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, ममता वर्मा, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नेहा जी और नरोत्तम बेन जी, आप सभी का इस लोकरंगी कार्यक्रम में आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। संगत करने वाले सभी साथी सिद्धार्थ मेस्ता, सुधीर जंगम साहब और बाकी साथी थे उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं, और आप सभी का एक बार फिर से हम अमूल्य वक्त देने के लिए और बहुमूल्य वक्त देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले, और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
3: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से

0: उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है आंधी, गुलजार के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं ब्लैक मेल फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुहाना सफर, इस फिल्म का गीत आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजें हैं, युगल स्वर हैं। मजू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत। शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है। कन्यादान फिल्म से ये गीत है।

प्रेम कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आजी बर्मन ने संगीत पर किया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस कुछ ही पलों में हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ आपके सुरीले सफर की हमराही बनेगी आपकी ये साथी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, आज की इबारत तो आपने पढ़ ही ली है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यार से पढ़िएगा। प्यार से पढ़ा ना आपने, मुझे यकीन है कि बहुत उलझाया नहीं होगा आज की इबारत ने आपको, क्योंकि बहुत ही सामान्य शब्दों से सरल भाषा में कविता के रूप में ये इबारत हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तैयार की है। हाँ तो हम सफर पर जा रहे हैं ना, तो उलझन में क्यों फंसाना? प्यार से लिखा है और प्यार से पढ़ा है, तो प्यार से ही सफर को तय भी तो करेंगे हम और आप मिलकर साथ में। तो तैयार है ना आप सभी मेरे साथ आज के इस सफर पर जाने को? हाँ, मैं पहली बार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब होने जा रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे सभी प्रिय श्रोताओं ने मुझे आज पहली बार सुरीला सफर शुरू करने की बहुत शुभकामनाएं बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ दी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इसके लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे भी अपना साथी स्वीकारने के लिए।

0: कुछ साथियों ने तो मुझे पायलट घोषित किया है। जी हाँ, क्योंकि हम सुरीला सफर लेकर जो चलने वाले हैं ना, इस सफर की पायलट उन्होंने मुझे बना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस तरीके से इस नाम से नवाजा है। और देखिए कुछ श्रोता मुझे किस तरह से आज मेरा स्वागत करते हुए हमें संदेश भेज रहे हैं कि देश की सुरीली धड़कन पर पहली बार जब नए उद्घोषक की जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये पूजा जी तो नहीं। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीला सफर लेकर आ रही हैं तो स्वागत, और विविध भारती का प्रसारण हवा की। हाँ, छा जाती है, भवरे भी गुनगुनाने।
1: 66 करोड़ रुपए की सरकारी निधियों के दुरुपयोग एवं हेराफेरी मामले की चल रही जांच के संबंध में चंडीगढ़, पंचकुला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। सीबीआई ने तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक सामग्री जब्त की। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में 6 परिसरों में छापेमारी की गई, जिसमें हरियाणा कैडर के वरिष्ठ लोक सेवकों और मेसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक के आवासीय परिसर शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान सबूत मिले हैं कि खाते खोलने, धन के हस्तांतरण और निधि की हेराफेरी में सरकारी अधिकारियों की बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत थी और आरोप है कि सरकारी अधिकारियों को इसके लिए अनुचित लाभ मिले हैं। नोएडा स्थित एक कंपनी मेसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के खाते में हेराफेरी की राशि प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई द्वारा हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से एक मामला हाथ में लेने और मूल रूप से आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में दर्ज किए 2 मामलों के बाद जाँच की जा रही है। प्रारंभिक जाँच पूरी करने के बाद सीबीआई पहले ही पंचकुला की सीबीआई अदालत के समक्ष 2 विभागों, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों की मामले में भूमिका का विवरण देते हुए प्रथम आरोप पत्र दायर कर चुकी है। आरोप पत्र में IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक के साथ जमा किए गए सरकारी धन की धोखाधड़ी के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि तीनों मामलों की जांच सक्रिय रूप से जारी है और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही अतिरिक्त आरोप पत्र दायर किया जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 15 मार्च को आयोजित बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अंबाला के जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि परिणामों में जिला अंबाला ने पूरे हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ

0: प्रदर्शन करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
1: 11,056 लोगों ने परीक्षा दी थी 15 मार्च के दिन और उनका अभी परिणाम आया है और 10,991 परीक्षार्थी सफल रहे हैं, यानी हमारा जो परीक्षा परिणाम है 99.41% रहा है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ इस बार उल्लास लर्नर्स का, वो भी सबसे ज्यादा हुआ, इसलिए जो लोग परीक्षा के अंदर बैठे वो भी हमारे सबसे ज्यादा रहे और परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोग भी जो है वो अम्बाला में सर्वाधिक रहे।
0: उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया,
1: जो लोग कभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय नहीं जा पाए, 15 साल से ऊपर की उम्र के वो लोग, 80 साल के भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों का पहले हम सर्वे करते हैं, उसके बाद उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है, उसके बाद उनकी परीक्षा ली जाती है भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, परीक्षा परिणाम आता है, उसके बाद तीसरी कक्षा तक की शिक्षा का उनको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है।
0: पलवल में फिट इंडिया एवं फिट हरियाणा अभियान को लेकर आज साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साइकिल रैली हुड्डा सेक्टर 2 पलवल से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में सम्पन्न हुई। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने लोगों को फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, खेल विभाग पलवल के उप निदेशक राम मेहर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में युवाओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। हरियाणा के आयुष विभाग एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज हिसार स्थित टाउन पार्क में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान योग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: अपनी आपसे आंखें चुराने लगते महबूब के नाम का आंचल और फिरते हैं, फिर चमन में कलियां खिले या कांटे मिले उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उन्होंने एक गाना भी हमें यहाँ पर बताया है, देखते हैं कि क्या वो आगे इस सफर में शामिल होने वाला है। फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड ये जो है हम गाना आपको सुनवाने वाले हैं उसी शब्द पर आधारित जी। तो लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख भेजिए। और इस फिल्म में ये एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो कि अभिनेता और जया भादुड़ी अभिनेत्री हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है।

जी हाँ साथियों, पानी रे पानी, इसी का तो इंतजार है हम सभी को बिल्कुल बेसब्री से, है ना। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, वैसा ही तो रंग है जिसमें भी ये घुल जाता है, मिल जाता है, बस वैसा ही हो जाता है। शरबत में घुल जाए तो वैसा, भूख को दबा के और प्यास बुझाए ऐसा, प्यास में प्यार में पानी प्यार के तरह ही बन जाता है। तभी तो पानी के बिना प्यार की बातें ही अधूरी होती हैं। और हम सभी को प्यारा है ये पानी, और पानी शब्द हमारी इबारत में हमने शामिल किया था, है ना। और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें लिख भी भेजा था ये गीत, पानी रे पानी, बिल्कुल सही। जो कब आएगा, कितना इंतज़ार है पानी का हमें, बरसात का पानी जो तपती धरती को ठंडा कर जाएगा, हमें शीतलता दे जाएगा। बस हम कर रहे हैं पानी का इंतजार। श्रोताओं, आप बताते चलिए, हम आपके संदेशों को शामिल करते जाएंगे। बहरहाल आपका एक आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सुरीला सफ़र का कार्यक्रम हम सफ़र बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और जिंदगी की ट्रेन में अब हम काफ़ी आगे की डब्बे में सवार हैं, जहां प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने की चीज़ भी नहीं रह गई। वो रह गुज़र, वो कश्मकश, वो जज्बात, वो अफसाने, वो अनसुलझे सवाल, वो अनकहे इजहार अब हमारे लिए बेमानी है। ये सारी बातें हमारे युवा श्रोताओं के लिए हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। वैसे ये गाने सुकून देने वाले हैं जो आज प्यार से भरे हुए हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इन जज्बातों को भूल जाएं। आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आज वो याद आने वाले हैं, सारे प्यार भरे लम्हे जिन्होंने आपको कभी गुदगुदाया था।

जी श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, और हमने एक और सवाल पूछा, इस फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुड़ी को ऐसा उनका क्या रिश्ता है और ऐसा क्या है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। जी हाँ, प्यार ही तो है वो रिश्ता जो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है। और वाद्य यंत्रों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाया जा रहा है, और कितना खूबसूरत गीत हमें ये मिला है ना।

तो हम आपके संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं। जी, उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहां प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई है कि जैसे ही जरा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो। कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है जब तुम पुकारते हो। तुम्हारे दिल की गली तक पहुंचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूँ, मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है।

एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन की सबसे गहरे और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है। फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जारी जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथी साथियों की आवाज़ों में। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब यही अगला गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, इस गाने में जो आपको बताना है वो ये प्रश्न है कि ये हसीनाएं किसकी सवारी कर रही हैं।

और श्रोताओं ये भी बताइए कि क्या आप आज के समय में साइकिल का उपयोग करते हैं। साथ ही साझा कीजिए आपके प्यार के लम्हों में साइकिल ने क्या योगदान दिया।

जी श्रोताओं, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

साइकिल उस जमाने में सिर्फ सवारी ही नहीं थी, ये प्यार के लम्हों की साथी भी बनती थी। साइकिल पर प्यार के लम्हों को ज़्यादा जिया जा सकता था, है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी बजाय, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, साइकिल पर तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के ज़माने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज़्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा की। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसकी जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतज़ार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए।

एक श्रोता कहते हैं कि पूरी भारत में प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी ही कविता के कुछ लाइनें यहाँ पर हमें लिखकर भेजी हैं। हाँ, और इसका जवाब भी आ गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है, क्या बात है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

यहाँ भी गीत में बारिश है, पानी है, प्यार का इकरार है। पानी, घटा, हवा सब कैसे प्यार के साथ जुड़ जाते हैं, ये हमें हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से पता चलता है।

0: एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी रे पानी गीत से आगाज होना भी बहुत भाया है, आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफर को, चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री हैं, यानी स्त्री जो प्यार से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
0: पवन करे शोर।
1: हाँ जी।

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल है हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती हैं और मन की बातों को उनके साथ सुर में पिरो रही हैं। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतज़ार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बड़ा चला जाता है। तो हाँ जी, देखिए उसके लिए तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएँ।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनवाया लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी। प्यार के एहसास से लबरेज वो बातों को याद कर रही हैं प्यार की, और अपनी खुशी जता रही हैं। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजते जा रहे हैं, उनके कुछ गीत इस इबारत

हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी।

जी हाँ, हीर ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आग चुराएं, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझे से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे हैं आनंद बख्शी के बोल एसडी बर्मन का संगीत। हीर राजा फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसे लिखा था कैफी आजमी ने, मदन मोहन का संगीत था।

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा। आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: Good afternoon. This is Akashwani, and I'm Sunil Verma with the Midday News. The headlines. India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New Delhi. Comprehensive strategic partnership and ways to further deepen bilateral cooperation under review. Home Minister Amit Shah calls for close watch on financial and property transactions along international borders. CBSE is to close Class 12 re-evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Saleem Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564 for 8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. India-Indonesia Joint Commission meeting is underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono are co-chairing the meeting. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year.
1: Our joint commission is happening after 4 years, and I think it's important to recognize that in those 4 years we made good progress in our bilateral relations. Today I look forward to extensive discussions with you covering the full spectrum of our bilateral cooperation, from political to defense and security, maritime, trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation.
0: Indonesian Foreign Minister Sugiono also said this is an important meeting to allow both the countries to review the progress of cooperation since the last Joint Commission meeting held in 2022.
2: I think it is an important meeting to allow us to review on the progress of our cooperation since the last JCM we held 2022, to address outstanding subjects to our common interests and follow up the result of the leaders' meeting during President Prabowo's visit to India, and of course to chart the way forward to translate this partnership into more concrete outcomes.
0: Our correspondent reports that the 8th India-Indonesia Joint Commission meeting will review the robust, comprehensive strategic partnership between both countries and discuss ways to further deepen bilateral cooperation.
3: India and Indonesia shares culture, colonial history and post-independence goals of political sovereignty, economic self-sufficiency and independent foreign policy. These ties have now expanded in the realm of more sophisticated political, economic, defense and science and technology cooperation ties. The joint commission mechanism was established at the level of foreign ministers following the signing of a memorandum of understanding in January 2001. Both nations elevated their ties to a comprehensive strategic partnership in 2018 during Prime Minister Narendra Modi's visit to Jakarta. Both countries also welcome the adoption of the shared vision on maritime cooperation in the Indo-Pacific, which has led to further deepening of the bilateral relations in the defense sector. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: Union Home Minister Amit Shah has called for a close watch on financial and property transactions along international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern states. More from our correspondent.
4: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted, and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained, and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on fake currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms, and instructed that the presence of Patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
5: For Akashvani News, Shuman Bhattacharjee, Agartala.
0: The government today said that Indian households continue to receive cooking gas at among the lowest prices globally, despite a sharp rise in international LPG prices. In a statement, the Petroleum and Natural Gas Ministry said that the Indian cylinder is cheaper than in any neighboring country and far below the price in advanced economies such as the United States, Australia, and Canada. We have more from our correspondent.
5: Highlighting energy security measures during the West Asia crisis, the government said India was among the few countries that managed to keep its energy cargoes moving through the Strait of Hormuz despite severe disruptions in maritime traffic. It said there has been no shortage of petroleum products in the country and LPG bottling and distribution operations have continued normally. Moreover, the ministry noted that a beneficiary of the Pradhan Mantri Ujjala Yojana pays 642 rupees for a 14.2 kg LPG cylinder after receiving a direct benefit transfer of 300 rupees on the first four refills annually, while the retail price for a general consumer in Delhi stands at 942 rupees. The ministry highlighted that the effective price paid by the Ujjala beneficiaries remains lower than cooking gas prices in neighboring countries including Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka. The ministry further added that domestic LPG production was increased by more than 60% during the disruption period, while supplies were also sourced from countries including the United States, Canada and Algeria to ensure uninterrupted availability. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: Today is the last day to submit applications for verification of issues observed and re-evaluation of answers on the post-result services portal for CBSE Class 12 Examination 2026. In a social media post, Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. It asked the students to complete and submit their applications before the deadline. The Central Bureau of Investigation, CBI, yesterday conducted searches at six premises at Chandigarh, Panchkula and Delhi NCR region in connection with the ongoing investigation with IDFC First Bank and AU Finance fraud case. The case is related to 661 crore rupees misappropriation fraud and siphoning of the government funds in eight departments of Haryana government and two departments of Municipal Corporation Chandigarh and Crest Chandigarh. In a statement, the CBI said that the search operations were carried out at residential premises of senior public servants of Haryana Cadre and a private consultant firm and its director in connection with irregularities committed and with regard to receipt of proceeds of crime. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Andhra Pradesh Governor Justice S. Abdul Nazir extended his warm greetings to Akashwani on the completion of its historic 90-year journey, describing the occasion as a landmark moment in the history of Indian public broadcasting. The governor praised Akashwani for its valuable contributions to society over the past nine decades.
6: Today marks a momentous milestone in the history of Indian broadcasting. I extend my best wishes as we celebrate 90 glorious years of Akashwani with one motto, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya.
0: The Telugu Desam Party, TDP, announced their three candidates for the Rajya Sabha elections scheduled to be held on the 18th of this month. TDP National President N. Chandrababu Naidu released the list of candidates, which includes industrialist Sana Satish, educationist and Bhashyam Educational Institutions Chairman Bhashyam Ramakrishna, and TDP Social Media Wing Chief Chintakayala Vijay. World Food Safety Day is being observed today globally. The day highlights food safety as a shared right and responsibility and serves as a powerful opportunity for collective action. This year's theme, From Problem to Solution, Safe Food Everywhere, highlights the importance of ensuring food safety through cleanliness and scientific practices from farm to plate. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda today reaffirmed the government's commitment to safe and hygienic food for a healthier future. Mr. Nadda urged citizens to adopt healthy eating habits and contribute to building a fit and self-reliant India. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya today participated in the 77th edition of Fit India Sundays on Cycle initiative in New Delhi this morning. Talking to the media, the minister said that cycling keeps the planet clean and offers a solution to the major problem of traffic congestion.
7: Cycling keeps you healthy and mentally fit. It also helps save fuel. It is an activity that helps keep the planet clean and sustainable. Moreover, cycling is an effective solution to one of the biggest problems today, heavy traffic.
0: Actor Vikrant Messi, who also participated in the Fit India Sundays on Cycle, described the initiative as incredible and said it has now become a movement.
8: It's an incredible initiative, and like you said, it's become a movement almost happening for more than a year and a half now. And today, as we speak, I stand corrected, there were nearly 15,000 people today. And simultaneously, every Sunday, 200 cities across India participate in this movement.
0: The India Meteorological Department, IMD, has forecast widespread rainfall across the country for the next 2 to 3 days as southwest monsoon advances while heatwave conditions continue to persist in parts of north and central India. Meanwhile, the Met Department has forecast heatwave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, West Rajasthan and coastal Andhra Pradesh for the next 4 days. Northwest India and Central India are likely to experience a rise in maximum temperatures by 2 to 6 degrees Celsius over the next 3 days. Today marks the 100th day of the conflict between the United States and Iran, a confrontation that has steadily expanded beyond its original front lines to affect key flashpoints across the Gulf and wider West Asia. What began with US and Israeli strikes on Iran in late February has evolved into a broader regional crisis involving missile exchanges, threats to maritime traffic in the Strait of Hormuz, and renewed tensions in Lebanon, placing increased pressure on efforts to preserve a fragile ceasefire. We have a report from our West Asia correspondent amid fresh escalations in the region.
9: On the 100th day of the conflict, tension still prevails in the Strait of Hormuz, with kinetic activity continuing to threaten one of the world's most important maritime corridors. U.S. Central Command says American forces intercepted two Iranian one-way attack drones on Sunday after determining they posed a threat to international shipping. The incident follows Friday's downing of four Iranian drones and subsequent U.S. strikes on Iranian radar and surveillance installations at Goruk and Kesham Island. Iran responded on Saturday by launching ballistic missiles towards Bahrain and Kuwait, with U.S. officials reporting that most were intercepted before reaching their targets. The crisis has also spilled into other fronts in West Asia. In southern Lebanon, a Lebanese military vehicle near Nabatea was struck during an Israeli operation, resulting in casualties among Lebanese armed forces personnel. Diplomatic initiatives aimed at halting the conflict continue, although significant obstacles remain. Discussions focus on preserving the ceasefire, ensuring the security of maritime navigation through the Strait of Hormuz, sanctions-related issues, and the future of billions of dollars of frozen Iranian assets held abroad. This is Vinod Kumar for Akashwani News, Dubai.
0: Just in, Prime Minister Narendra Modi has expressed sorrow at the passing of veteran actor Saleem Kumar. In a social media post, the Prime Minister said that the actor made a mark with his versatility and memorable performances across a wide range of roles over the course of his distinguished career. Mr. Modi said that his thoughts are with the actor's family and countless admirers in this hour of grief. In cricket, India have declared their innings at 564 for 8 on day 2 of the one-off test against Afghanistan in New Chandigarh. In response, Afghanistan were 28 for 1 in their first innings when reports last came in. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated the Indian women's football team on winning the SAF Women's Championship 2026. In a social media post, he said that the team played excellently through the tournament. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New Delhi. Comprehensive strategic partnership and ways to further deepen bilateral cooperation under review. Home Minister Amit Shah calls for close watch on financial and property transactions along international borders. CBSE to close Class 12 re-evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Saleem Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564 for 8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
10: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
11: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
10: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
10: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
4: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
10: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
12: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भारतीयों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष ₹300 की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से ₹642 का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत ₹942 है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
10: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर ₹29 की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत ₹942 हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
13: संघर्ष के 100वें दिन भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
10: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में, वक्त फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत साहिर लुधियानवी के बोल हैं संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और यह अगला गीत दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में जीएल रावल ने इस गीत को लिखा। सोनिक ओमिका संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बत किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राज। शमीम जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। मनचाहे गीत इस कार्यक्रम में हम करते हैं शामिल आपके उन पत्रों को जिनमें आप लिख भेजते हैं हमें आपकी मनचाहे गीत। लीजिए हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। तो सुनिए अपना मनचाहा गीत।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में लीजिए। अब अगला खत हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मला वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण। इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत। गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू। लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उन्हीं की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मर्जू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।
4: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है, पंचकुला सेक्टर 9 से। इन्होंने हमें खत लिख भेजा है।

शिव चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्ल्यू अंसारी और बेबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल उमेश सरोज, आरती रेखा रितिका, रिचा स्वीटी सागर, रिया रीत ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का, और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने, और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इद्रिसी, नईम इद्रिसी और नदीम इद्रिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

समर्पण हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खान। वालिया का नाल राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खान आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
3: कहिए कैसे आड़ा हुआ, कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जाबख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: तेरे की हार हो गई, जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना आयुब?
2: जी, आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
3: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
3: है? हाँ जरूर जरूर। और लक्ष्मण, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
4: जी हुजूर।
5: सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
5: हजूर ने मैंने याद किया ही है।
3: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
5: सौंपो जी सौंपो।
3: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान।

0: घुड़सवारों सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
1: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
0: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
2: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के मानित ही रखूंगा।
0: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
2: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
0: और जाओ, गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
3: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया।
4: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम खादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इससे माहौल सजा मिलेगी।
3: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
4: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे मुआफ।
3: उफ दादी जान,
4: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारहा तखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
3: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
4: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
3: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
4: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में ना आए।
3: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
4: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
3: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
4: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीस की तरह।
3: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
4: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
3: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदज़ात कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।
5: जो हुक्म आ लीजा। आलम बना, गुलाम कादिर हाजिर है।
3: बदज़ात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाए और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल की तू शाही हरम में।
6: हुजूर, हुजूर, रहम।
3: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हरामखोर की कोड़ों से खाल उधेड़ दी जाए।

उफ, कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमे खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीरुल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहंशाह को मजबूर कर दिया, तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा। क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। कोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाऊंगा।

0: नामवर, किसने भेजा है यह खत?
1: हुजूर, यह खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है वो खत। अजीज
2: नवाब गुलाम कादिर, बात तस्लीमात के तहरीर है कि किले और हरम की हालत फिलहाल बहुत नाजुक चल रही है। किले में हमारी बार बार तौहीन होती है, बादशाह अक्सर बदसलूकी करने लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजी ताकत से किले पर कब्जा कर लो और शाह आलम सानी को तख्त से हटाकर बेदार बख्त को तख्त नशीं कर दो तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही तुम्हें 12 लाख रुपहली सिक्के बतौर इनाम अता करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अपना मददगार ही समझो। किले तक पहुंचने के बाद जो कुछ इमदाद हम और हमारे वफादार खादिम कर सकेंगे जरूर करेंगे।
0: तो ये खत बादशाह की दादी जान और बेगम महल साहिबा की तरफ से है। ये वही जमानी बेगम है जिन्होंने मेरे कोड़े लगवाए, जलील किया और आज मुझसे इमदाद की तालिब है। कहीं कोई दगा तो नहीं? नहीं, नहीं, कोई दगा नहीं। इतने दिन किले में रहा, बेगमों की मुहरें अच्छी तरह पहचानता हूं, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हर तरफ हमारी फतह हो रही है, हमारा सितारा बुलंदी पर है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना हमारे हक में होगा।

0: मियां शमशेर खां, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगाकर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: ओफ, हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मन बहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक दो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत हो, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेह याबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह। अब किसी को भी मैं बच्चों के घरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगमों ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी। आहा!

0: लाला जी, गुलाम कादिर किले में दाखिल हो गया है। ये मैंने तहकीक कर लिया है कि शहनशाह से दस्तखत कराने के लिए एक दस्तावेज तैयार हो रही है। शायद कादिर को मीर बख्शी का ओहदा और पुश्तैनी खिताब दिया जाए। और उधर जहाँ बना हरम में जा चुके हैं।
1: उफ मियाँ शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं जाकर जहाँ पना को आगाह करना होगा।
0: हुजूर, बादशाह सलामत आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप किसी भी वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस गुलाम कादिर से उन्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
1: देखो मैं जाता हूँ, अगर वक्त मिला तो दस्तखत कराने के बहाने कादिर से ही वह दस्तावेज हत्या लूंगा, तब शहंशाह को आगाह करा पाऊंगा।
2: कहिए लाला जी, कैसे आना हुआ?
1: जहां अपना गुस्ताख ही माफ हो, वैसे बंदा इस वक्त हुजूर को कतई जहमत नहीं देता, मगर जरूरत कुछ ऐसी।
2: बोलो लाला जी, क्या बात है?
1: हुजूर, गुलाम कादिर किले में दाखिल।
2: हाँ हाँ, वो हमसे मिल चुका है।
1: जहां अपना वह एक दस्तावेज पर दस्तखत कराना चाहता है। मैंने दस्तखत कराने से पहले उसे पढ़ने की गुस्ताखी कर ली है।
2: पढ़ लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
1: अलीजा, मुझे तो इसमें दगा का अंदेशा हो रहा है।
2: दगा? कैसी दगा? देखें क्या है दस्तावेज में। लेकिन इसमें दगा क्या हो सकती है? ये सब बातें तो वो पहले ही तय कर चुका है। लाला जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुज़िश्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलमपना, वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर वो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है, जहां पना के हुक्म के देर है। अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
2: लाला शीतलदास, ये हमारी जानिब से दगा होगी। हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ दगा, तवारीख के सफे लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को दे दें।
1: जी बहुत अच्छा।
3: जनाब ने कैसे याद किया?
2: कादिर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बालाए ताक रख दी।
3: जनाब, अभी हुजूर का गुस्ताखी से सबका पड़ा ही कहा है। गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
2: क्या कहा?
3: हुजूर, ये गुलाम कहने में नहीं करने में एतकाद रखता है। गुलामों, देख क्या रहे हो, इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
2: नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
3: नहीं, लेकिन जरा ठहरो, इसे भी बेदार बख्त की तख्त नशीनी का चश्मदीद गवाह बन जाने दो और इसकी आंखें निकलवा दो। आहा!

0: शादी उसे भला ये कैसे हो सकता है कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है। ये बला कैसे आन तक की?

0: बीसाजी। इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है सरदार इंगले।
1: श्रीमंत
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

0: जहां बना ले की ये दुर्दशा।
1: बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया।
0: जहां पना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने। हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीहे, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है।
0: हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शे, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।
1: खुदा हाफिज़।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख कान नाक होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ये उस कमीने की आंखें हैं, ये कान,

0: ये है हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
1: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी इसी वक्त।
2: नहीं
0: सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
1: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जानें बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
1: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
3: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
1: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1,000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधोजी सिंधिया भी शामिल है।

लाला शीतल दास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, चल चल रे नौजवान या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था, आपके घर का क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
3: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज़ उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं, तो वो चीज़ें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहाँ पर शहादत हुई रिजांगला में, और वो चीज़ से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहाँ पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहाँ चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई

0: और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते हैं यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं? आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
1: जी।
0: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
1: जी।
0: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल।
0: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक है।
0: तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
1: जी।
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
1: जी।
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी,
1: अच्छा।
0: ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है आशा दीदी गाएगी, फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुआ, ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में।
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे, एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी,
1: अच्छा।
0: एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना, लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में, और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन,
1: अच्छा।
0: हाँ तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना
1: जी।
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए
1: जी।
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, लोग एकदम सुनना शुरू किया कि ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो
1: था।
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको, क्योंकि उनके मन में भी ग्लानि बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानि थी
1: जी,
0: गिल्ट फीलिंग
1: जी।
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है?
1: अच्छा।
0: ये लिखा किसने है
1: जी?
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहाँ के हैं, ये तो बम्बई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बम्बई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को ज़रूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आँख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है। हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में हमारे, देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं
1: जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के
0: लक्ष्मीकांत जी।
1: जी
0: वो आए, दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में।
1: अच्छा।
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना, इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी
1: जी, जी।
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, और उनको ये कहते हुए सुना, ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा, पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए, और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा, और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए
1: जी,
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों आपने लिखा है, अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस से इसको सुन रहे हैं
1: जी,
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रहे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी,
1: बताइए।
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो जाते थे दिल्ली
1: जी, जी जी।
0: तो ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है
1: कि जो होता है अच्छा के लिए होता है
0: जी। उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा, इसी गीत को सुनाए।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
0: जी।
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी,
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है
1: जी।
0: ए मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले मेरे वतन के लोगों,
0: जरूर जरूर,
1: जरा आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए, हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: जी,
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी,
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी? आप किस तरह का माहौल लगता था? कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी,
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे। आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास। हाँ हाँ। और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे। हम लोग खड़े तो ये बात थी। एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
0: जी,
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे। हमारे घर पे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
0: जी,

0: काफी आते थे, जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए।
1: जी जी।
0: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
1: जी।
0: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
1: बिल्कुल।
0: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे
1: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
0: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था? न्यूज, अखबार। मतलब जो अखबार सुबह आए तो 4-5 अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
0: हाँ हाँ, अभी भी याद। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार।
1: जी,
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
1: इतनी भाषाओं के
0: हमारे वहाँ अखबार आते थे
1: और उसे पढ़ा जाता
0: और आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए।
1: जी।
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती। बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 6:45 का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था?
0: हाँ हाँ
1: जी,
0: एक नहीं 2-3 रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा।
0: जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में।
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था और हर कण कण तो में वो देशभक्ति।
0: ये जो जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह, मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों।
1: वाह क्या बात है, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है ये, और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को। गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसी, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: सबसे दुनिया में रहते हुए भी उस माहौल में रहते हुए भी,
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहरी ने
0: जी।
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो?
1: हाँ, हम अभी
0: जो फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था, हाँ, कविताओं का।
1: हाँ, हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ
0: जी।
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी। उसी दौरान, उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लहलही विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: यही पैगाम,
1: ये वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा, और कुछ नहीं,
0: यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते,
1: ठुकरा नहीं सकते,
0: भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम सुन लें?
1: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है,
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी, तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंधेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से, मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारे पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाएं और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति मिली हमको, जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी जी।
1: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
0: अच्छा।
1: जब मिल गई आजादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
0: बहुत बड़ा सवाल।
1: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
0: इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के,
1: तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से, और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश
0: जी,
1: आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
0: जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
1: हर एक लाइन सुनिए आप
0: जी।

0: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही है और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाक्या हुआ था
0: जी,
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलता मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपिनियर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं, प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं।

शाम के 5 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही पलों में 5:05 पर आप सुन सकते हैं गाने नए पुराने। शाम 5:30 पर हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा युववाणी।

शाम 6:20 पर आप सुन सकते हैं गीता संदेश। गीता संदेश में आज गीता के 5वें अध्याय से श्लोक 7-11 की व्याख्या सुनिए। व्याख्याकार होंगी डॉक्टर नीमा रानी। शाम 6:30 से 7:30 तक हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, थारे संदेश मारे गीत।

शाम 7:30 पर हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा जय जवान। शाम 7:45 से सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता। रात्रि 8:00 आप सुन सकते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। प्रस्तुति रहेगी अमरीक सिंह की।

रात्रि 8:30 पर कुछ बातें कुछ की। रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।

रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम आपके लिए और 9:30 से 10 बजे तक सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। ये दोनों ही कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से रिले किए जाएंगे। और दोस्तों रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक आप सुन सकते हैं हमारा साप्ताहिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो एफएम। इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत। हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए 01744221322 यानी 01744221322। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं गाने नए पुराने।

दोस्तों, ज्योति बने ज्वाला फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ज्योति बने ज्वाला फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी।

दोस्तों, ताल फिल्म का ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा हुआ। इस गीत को आवाज़ें दी थी अनुराधा श्रीराम, एआर रहमान, सुजाता और सोनू निगम ने। दोस्तों, इस बेहद ही खूबसूरत गीत को संगीत में पिरोया था एआर रहमान ने। ताल फिल्म 1999 में रिलीज़ हुई थी और ये जो गीत आप सुन रहे थे, ये स्क्रीन पर फिल्माया गया था अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या रॉय पर।

दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गीत आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीतकार थे नदीम श्रवण। दोस्तों, दिल है कि मानता नहीं फिल्म 1991 में रिलीज़ हुई थी और ये जो गीत आप सुन रहे थे ये स्क्रीन पर फिल्माया गया था आमिर खान और पूजा भट्ट पर। लीजिए दोस्तों कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

दोस्तों दूसरा आदमी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, संगीतकार थे राजेश रोशन। और दोस्तों दूसरा आदमी फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। दोस्तों इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए गाने नए पुराने समाप्त होता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गाने नए पुराने एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

युवा साथियों, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। आज का युववाणी का ये अंक लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। और दोस्तों, आज का युववाणी का सफ़र आप तय करेंगे अपने दोस्त विपिन सहगल के साथ। दोस्तों, आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो ने राष्ट्र की सेवा और प्रसारण में अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज यानी 7 जून को आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित एक विशेष वॉकथॉन यानी पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन, समाज में एकता, स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर कल, अनुशासन और सकारात्मक सोच का संदेश दिया गया। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के प्रांगण में और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के जितने भी प्रस्तुतकर्ता थे, आकाशवाणी परिवार के सदस्य और शहरवासियों ने बड़े उत्साह और उमंग से भरे इस कार्यक्रम में शिरकत की। दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा की बधाई व शुभकामनाएं। दोस्तों, 8 जून 1936 को आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी। ठीक एक दिन पहले यानी कि आज के ही दिन 7 जून को द इंडियन लिसनर पत्रिका में इसकी घोषणा छपी थी। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं। यदि आप हमारे कार्यक्रम लगातार सुनते हैं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से पता होगा। तो जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9466021336 इस नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेज दीजिए आज के इस प्रश्न का, जो सही उत्तर है यदि आपको पता है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न ये है कि आपको ये बताना है कि आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस वर्ष में दिया गया। एक बार फिर सुनिए, 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, लेकिन आकाशवाणी जो इसका नाम था वो किस वर्ष में ऑल इंडिया रेडियो को दिया गया, आपको ये बात हमें व्हाट्सएप संदेश के जरिए बतानी है। यदि आपका उत्तर सही हुआ तो आपका नाम आज के ही कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, सुनते रहिए 101.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र।

0: स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों आज है 7 जून और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसका मुख्य विषय है बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन, यानी कि फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर। ये थीम है इस वर्ष के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का। दोस्तों इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों को रोकना और गुणवत्तापूर्ण भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। हर वर्ष लगभग 60 करोड़ लोग दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ते हैं दोस्तों, तो ये दिन हमें इस बात की अवेयरनेस कराने की कोशिश करता है, हमें जानकारी देता है कि हम जो खाना खाते हैं और जो खाना हमें खाना चाहिए वो सुरक्षित होना चाहिए, और खाने से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए हमें सारे प्रयास करने चाहिए और समाज में भी जागरूकता फैलानी चाहिए। तो दोस्तों ये बात हमने की विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। आइए अब आपको युवा फरमाइश के अंतर्गत ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का गीत सुनवाते हैं। ये गीत सुनने के लिए जो हमें फरमाइश मिली है वो मिली है मुकाम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर मुलानी, बानू भी मुलानी और बादशाह मुलानी। आर्यन वर्मा का हमें मैसेज मिला है ज़िला खरगोन छनावत मध्य प्रदेश से। अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगदाब। हीरामणि वर्मा का भी मैसेज मिला है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा। और अगला हमें संदेश जो मिला है इस गाने को सुनने के लिए टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांदी और वामिका की तरफ से। विकास बंसोड़े मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े और वैभव का संदेश मिला है। और दोस्तों एक और मैसेज जो हमें मिला है ये मैसेज नवी हसन की तरफ से हमें मिला है मरहरा दरवाज़ा एटा से। शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम अब्बासी, रसीद वारसी, यशफ अब्बासी और इसी गीत को सुनना चाहते हैं बबलेश पंवार। ये मैसेज गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से मिला है बबलेश डैनी, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खिलौफी की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। तो लीजिए आपकी फरमाइश पर युवा फरमाइश के अंतर्गत हम आपको ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं। Thank you.

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, कलंक फिल्म का एक गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहते हैं तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीनिवास, करुणा आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास। अनिल जैन का हमें मैसेज आया है मलियान सरधना मेरठ से। लिखने वाले हैं अनिल जैन, जैन संयम जैन, मुस्कान जैन और जिव्यम जैन। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। और अगला मैसेज कबीर रेडियो श्रोता संघ लोहार बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर, अजय देव, तुषार देव और बेबी पूजा तमरिया। लीजिए, कलंक फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी ही फरमाइश पर।

दोस्तों, दिल तो पागल है फिल्म का एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। माफ़ कीजिएगा, लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज़ों में। सुनना चाहते हैं कॉल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीन, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। और अगला मैसेज हमें मिला है करनाल से विकास, रेखा और अदिति की तरफ से। जसबीर सिंह का हमें मैसेज मिला है, ये मैसेज हमें मिला है जींद हरियाणा से, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं दोस्तों। मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सासापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। इसी गीत को सुनने के लिए पानीपत हरियाणा से हमें मैसेज मिला है सुधाकर विश्वास, मोहित और सुजाता की तरफ से। लीजिए, हम आपकी पसंद भी पूरी कर रहे हैं। दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत सुनिए।

और दोस्तों आज से हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस वर्ष में दिया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1956। इस प्रश्न का सही उत्तर हमें मिला है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता की तरफ से। और दोस्तों अगला सही उत्तर हमें मिला है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की तरफ से। कुछ हमारे श्रोता इस प्रश्न के जो हम पूछना चाह रहे थे उसको समझ नहीं पाए, और ज़्यादातर हमें जो उत्तर मिले हैं वो उत्तर हमें मिले हैं 8 जून 1936। तो 8 जून 1936 को तो ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR की स्थापना हुई थी, इसको आकाशवाणी नाम दिया गया था 1956 में। इसी सूचना के साथ दोस्तों आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अब अपने दोस्त विपिन सहगल को युववाणी कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। बस अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार और प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल

0: प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जाँच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, they reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. Both sides discussed ways to further strengthen cooperation in a wide range of areas, including political affairs, defense and security, maritime cooperation, trade and investment, pharmaceuticals and healthcare, digital technology, energy, connectivity, space, education, consular matters, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jayashankar and Mr. Sugiono welcomed the growing momentum in bilateral ties and agreed to hold the next Joint Commission meeting at a mutually convenient date in the near future. West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agnimitra Paul today chaired a high-level administrative review meeting at Siliguri. Discussions focused on municipal affairs, women and child development, social welfare, disaster management, sanitation, drainage, waste management, traffic regulation and the implementation of various government schemes. Later addressing the media, Ms. Paul said, Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri will soon be developed as 5 Himalayan cities. She said strict measures will be taken to improve urban infrastructure and cleanliness. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said the Narendra Modi government has transformed India in the past 12 years into an aspirational nation driven by opportunity, innovation and self-belief. Speaking to media, Dr. Singh said governance reforms, technological democratization and citizen-centric policies have fundamentally changed the way people of the country view their future prospects. He said India's space economy, currently valued at nearly $9 billion, is expected to grow to about $45 billion over the next 7 to 8 years. Today is the last day to submit applications for verification of issues observed and re-evaluation of answers on the post-result services portal for Class 12th examination. In a social media post, the Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. It asked the students to complete and submit their applications before the deadline. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Major Abhilasha Barak on being conferred the UN Military Gender Advocate of the Year Award. In a social media post, he said the honour recognises Major Barak's exemplary service and India's long-standing contribution to United Nations peacekeeping efforts. Mr. Modi said her achievement is an inspiration to countless young Indians, especially the nation's daughters, who aspire to serve the country and humanity. Major Barak is currently serving with the UN peacekeeping mission in Lebanon as an engagement team commander and gender focal point. The India Meteorological Department has forecast widespread rainfall across the country for the next 2 to 3 days as southwest monsoon advances while heatwave conditions continue to persist in parts of north and central India. Central Arabian Sea, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, parts of Telangana, southwest and north Bay of Bengal and northeastern states have favorable conditions for the advancement of monsoon during the next 2 to 3 days. Meanwhile, the Met Department has forecast heatwave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, West Rajasthan and coastal Andhra Pradesh for the next 4 days. In cricket, Afghanistan 113 for 5 in their first innings at stumps on day 2 of the one-off test against India in New Chandigarh, trailing by 451 runs. Rehmat Singh remained unbeaten on 43 at the end of play. For India, debutant Manav Sutar picked up 3 wickets while fast bowler Prasidh Krishna claimed 2. Earlier in the day, India declared their first innings in a commanding 564 for 8. Captain Shubman Gill led the charge with 126, while KL Rahul struck 100. Indian wrestlers continued the impressive run at the Ulaanbaatar Open in Mongolia today, winning 2 gold and 2 bronze medals in the men's freestyle category. Deepak clinched the gold medal in the 61-kilogram category, defeating Kazakhstan's Asil Aitikhan 6-0 in the final. And that is the end of this news bulletin.

0: शिविर लगाए गए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सभी से योग अभ्यास करने की अपील की और पलवल में फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज हरियाणा सरकार के 8 विभागों और नगर निगम चंडीगढ़ और क्रेस्ट चंडीगढ़ की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक में रखे 661 करोड़ रुपए की सरकारी निधियों के दुरुपयोग एवं हेराफेरी मामले की चल रही जांच के संबंध में चंडीगढ़, पंचकूला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। सीबीआई ने तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक सामग्री जब्त की। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार 6 परिसरों में छापेमारी की गई, जिसमें हरियाणा कैडर के वरिष्ठ लोक सेवकों और एक निजी कंपनी और इसके निदेशक के आवासीय परिसर शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान सबूत मिले हैं कि खाते खोलने, धन के हस्तांतरण और निधि की हेराफेरी में सरकारी अधिकारियों के बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत थी और सरकारी अधिकारियों को इसके लिए कथित अनुचित लाभ मिले। नोएडा स्थित एक कंपनी के खाते में हेराफेरी की राशि भेजी गई, जिसे बाद में निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने बताया कि प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद पंचकूला की सीबीआई अदालत के समक्ष प्रथम आरोप पत्र दायर कर चुकी है और जल्द ही अतिरिक्त आरोप पत्र दायर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज कुरुक्षेत्र में ईंधन बचाओ कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पहले उन्होंने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा में गुरुकुल पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, भूमिगत जल बचाने और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक एवं गौ आधारित खेती की ओर लौटना समय की आवश्यकता है।
2: इस समय हमारी धरती बंजर हो, लोगों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। किसान इतना यूरिया, डीएपी, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। हम किसानों से आग्रह करेंगे आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें, गौ आधारित खेती की ओर लौटें, जिससे हमारा भूमिगत पानी भी बच सके, पर्यावरण और लोगों का स्वास्थ्य भी बच सके और धरती माता का भी स्वास्थ्य।
0: उन्होंने कहा कि आज विश्व स्तर पर तेल संकट गहरा रहा है और भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च कर तेल आयात करना पड़ता है। प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप सभी नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि ई रिक्शा का उपयोग बढ़ाने से एक और पर्यावरण प्रदूषण कम होगा तो दूसरी और इससे जुड़े जरूरतमंद परिवारों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने लोगों से ई रिक्शा और अन्य पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हांसी में विशेष योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने शिविर में बतौर मुख्य अतिथि योग अभ्यास किया। योग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व निर्धारित तैयारियों में पूरा देश लगा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 1 जून से गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की है। उन्होंने सभी से योगाभ्यास करने की अपील की।
3: आज 12वें

0: में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के यहाँ पर सभी लोग पहुँचे। देखिए बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, अगर आपका शरीर स्वस्थ हो तो आपके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना, उसका समय देना, और समय देने के लिए हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों में इस तरह की विद्या ये हम लोगों को विरासत में दी हुई है, बस हमने थोड़ा उस पर चलने का साहस ये रखने की जरूरत है। तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि ये योग का जो अभ्यास चल रहा है इस अभ्यास में सब लोग शामिल हो।
1: हरियाणा के आयुष विभाग एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वाधान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज हिसार स्थित टाउन पार्क में भी योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान योग विशेषज्ञों द्वारा योग के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक लाभों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने सभी को योग के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि शरीर स्वस्थ नहीं तो किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी चीज कुछ मायने नहीं रखती, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। श्री महिपाल ढांडा ने आह्वान किया कि योग अभ्यास में अधिक से अधिक लोग शामिल हों। पलवल में फिट इंडिया एवं फिट हरियाणा अभियान को लेकर आज साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साइकिल रैली हुड्डा सेक्टर 2 पलवल से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में संपन्न हुई। रैली के दौरान श्री गौरव गौतम ने लोगों को फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।
2: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा एक कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया को लेकर चल रहा है, संडे ऑन साइकिल, उसको लेकर हमारे युवा साथियों के साथ आज हमने साइकिल यात्रा की है। और ये साइकिल यात्रा हमारे भारत को स्वस्थ रखने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए कि वो साइकिलिंग करें, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े, व्यायाम करें, जिससे वो स्वस्थ रह सके और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना कर सका। और स्वस्थ रहोगे तो सब काम कर पाओगे। अपने जीवन में एक घंटा जरूर चाहे साइकिलिंग करें चाहे व्यायाम करें।
1: इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में युवाओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। जींद के नागरिक अस्पताल के प्रांगण में आज सामाजिक संस्था हेल्प ए मिशन ही एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 68 लोगों ने रक्तदान कर इस महादान में अपना सहयोग दिया। संस्था के पदाधिकारी रजनीश ने बताया कि नागरिक अस्पताल से रक्त की कमी होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने इस शिविर का आयोजन किया।
3: और जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस टाइम गर्मी का मौसम है और गर्मी अत्यधिक होने के कारण शहर में ब्लड कैंप बहुत कम लग रहे थे, और सोमवार को हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से यहाँ से फोन आया था कि यहाँ पर ब्लड की काफी कमी हो गई है, कृपया आप ब्लड कैंप लगाइए। तो उसी कड़ी में हमने रविवार के दिन यहाँ पे ब्लड कैंप लगाया। आज हमारा यहाँ पर 60 से 70 यूनिट का टारगेट रखा गया है, तो अभी तक लगभग 40 के करीब यूनिट यहाँ हो गई है और उम्मीद है कि इस तरह से यूनिट हो जाएगी।
1: हरियाणा विधानसभा की मेजबानी कल से 10 जून तक भारतीय क्षेत्र के उत्तरी जोन 2 के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज विभिन्न राज्यों के पीठासीन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आगमन शुरू हो गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ के 2 विभागों की IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखी सरकारी निधियों के दुरुपयोग व हेराफेरी के मामले के संबंध में चंडीगढ़, पंचकूला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। और पलवल में फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
4: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गीता संदेश। गीता संदेश में आज गीता के 5वें अध्याय से श्लोक 7 से 11 की व्याख्या सुनिए। व्याख्याकार हैं डॉक्टर नीमा रानी।
5: श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 7 से लेकर 11 तक श्लोकों की व्याख्या। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेन्द्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जो योग में स्थापित है, जिसने मन, शरीर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, वह कार्य करते हुए भी कलंकित नहीं होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की भावना से काम करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण को दर्शाया है। शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति सभी जीवित प्राणियों में स्थित भगवान को देखता है। वह बिना किसी आसक्ति के सभी के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है। कर्म करते हुए भी कर्मयोगी व्यक्ति आगे कोई इच्छा उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि वही दृष्टि होती है जो एक त्यागी की होती है। वह सर्वत्र शाश्वत सत्य को देखता है, स्वयं में भी और अन्य सभी में भी। इच्छाओं के समाप्त हो जाने से इंद्रियां, मन और बुद्धि, जो इंद्रिय सुखों के लिए प्रेरित हो रहे थे, नियंत्रण में आ जाते हैं। केवल जब कर्तापन की भावना मौजूद होती है तो कार्य आगे इच्छाओं को जन्म दे सकते हैं। जब कर्मों के पीछे का अहंकार दूर हो जाता है तो वे कर्म आगे इच्छाएं उत्पन्न नहीं करते हैं। भक्ति में कर्म के द्वारा ही भीतर से ज्ञान प्राप्त होता है, अतः कर्मयोग ही स्वाभाविक रूप से आत्मज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। इसलिए कर्म संन्यास से अलग नहीं है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद पश्यन शृण्वन् सपृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्।

इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। हम जब भी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हैं तो हम गर्व से अभिभूत हो जाते हैं कि हमने कुछ महान काम किया है। कर्मों के कर्ता होने का यही अभिमान हमें भौतिक चेतना से ऊपर उठने में बाधा पहुंचाता है। जिसने शाश्वत सत्य को जान लिया है वह ऐसा कोई दावा नहीं करता कि वह किसी कार्य को कर रहा है। वह स्वयं को शरीर से अलग देखता है और अपने शारीरिक कार्यों का श्रेय स्वयं को नहीं देता। शरीर भगवान की भौतिक ऊर्जा द्वारा बना हुआ है। सभी शारीरिक गतिविधियां मन और बुद्धि के द्वारा स्वचालित रूप से हो रही हैं। वह सभी कार्यों को भगवान की शक्ति द्वारा किया गया मानते हैं। हम समझते हैं कि पलक झपकना, सांस लेना, सुनना, सपने देखना इत्यादि स्वचालित हैं। लेकिन सोचने की प्रक्रिया के बारे में हमारे क्या विचार हैं? विचार की प्रक्रिया भी स्वतः ही घटित होती है। जब तक अहंकार का नाश नहीं हो जाता तब तक हमारे मन में स्वार्थी विचार उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे जैसे कर्म योग के माध्यम से अहंकार नष्ट होता जाता है, स्वार्थी विचार धीरे धीरे निस्वार्थ विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं। जिसने शाश्वत तत्व का साक्षात्कार कर लिया है वही वास्तव में जानता है कि वह कर्ता नहीं है। वह अपनी मन और बुद्धि को भगवान की दिव्य इच्छा के अनुसार प्रेरित करने के लिए उस पर निर्भर है। उसकी समझ के अनुसार ईश्वर ही सब कुछ का करता है। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए लेकिन आंतरिक रूप से स्वयं को अकर्ता के रूप में और भगवान को अपनी सभी गतिविधि के प्रमुख संचालक के रूप में देखने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि कर्मयोगी स्वयं को ईश्वर के हाथों में मात्र एक उपकरण के रूप में देखते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। अर्थात जिस व्यक्ति ने साक्षात्कार कर लिया है, जो यह जानता है कि वह अपने सभी कार्यों का कर्ता नहीं है, जिसने अपनी स्वार्थी इच्छाओं को शांत कर लिया है, वह ईश्वर की भक्ति की भावना से सभी कार्यों को अर्पित करता है। यदि किसी व्यक्ति की स्वार्थी इच्छाएं शांत नहीं हुई हैं, तो कर्मयोग ही उसके लिए श्रेष्ठ मार्ग है। जो कर्मयोग का पालन नहीं

0: करता है वह अपने अहंकार के लिए ही कार्य करता है। आसक्ति के विषय में विचार करें तो ज्ञात होता है कि आसक्ति चार प्रकार की हो सकती है। किसी कार्य के परिणाम के प्रति आसक्ति, क्रिया के प्रति आसक्ति, कर्तापन की भावना से आसक्ति और अकर्तापन की भावना से लगाव। किसी कार्य के परिणाम के प्रति आसक्ति तब होती है जब हमें कार्य को करने के लिए कोई इनाम चाहिए। क्रिया के प्रति आसक्ति तब होती है जब हम अपने तरीके से कार्य करना चाहते हैं। कर्तापन की भावना से आसक्ति वह है जब हम सोचते हैं कि मैं ही इस कार्य को कर रहा हूँ। चौथा, अकर्तापन की भावना से लगाव तब उत्पन्न होता है जब कर्मयोग का सिद्धांत समझ में आ जाता है। कर्मयोगी संसार में ऐसी दृष्टि से कार्य करता है कि आगे कोई भी इच्छा एकत्रित नहीं करता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करते हुए केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे एक कर्मयोगी अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, लेकिन वास्तव में वह ऐसा कैसे करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि कर्मयोगी निरंतर यह विचार रखता है कि शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां ये सभी ईश्वर की संपत्ति हैं, ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। इसलिए किए गए सभी कार्य ईश्वर के लाभ के लिए हैं, न कि अहंकार के लिए। योगी व्यक्ति समझता है कि खुशी की तलाश में भौतिक इच्छाओं का पीछा करना रेगिस्तान में मृग तृष्णा का पीछा करने जैसा व्यर्थ है। इसी कारण वे स्वार्थ इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और अपने सभी कार्य भगवान की खुशी के लिए करते हैं। सच तो यह है कि ईश्वर को हम में से कुछ भी नहीं चाहिए। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान और परिपूर्ण है। फिर एक छोटी सी आत्मा उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को क्या अर्पित कर सकती है। इसलिए भगवान को प्रसाद अर्पित करते समय कहा जाता है, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम्। अर्थात हे प्रभु, मैं आपकी वस्तु ही आपको अर्पित कर रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका ही है और उसे ही मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मेरे पास अपनी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूँ। हमारी एकमात्र स्थायी संपत्ति वह पवित्रता है जो हम प्राप्त करते हैं। यही हमारे साथ हमारे अगले जीवन में चला जाता है, जबकि हमारी सारी भौतिक संपत्ति पीछे छूट जाती है। हमारे जीवन की सफलता और विफलता इस बात से निर्धारित होती है कि हम हृदय की शुद्धता किस हद तक प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण श्रेष्ठ योगी प्रतिकूल परिस्थितियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि वे उन्हें हृदय को शुद्ध करने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे सफलता और विफलता दोनों में ही समान भाव से कार्य करते हुए परिणाम को भगवान को अर्पित कर देते हैं। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुनी श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 7 से लेकर 11 तक श्लोकों की व्याख्या।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश। गीता संदेश में आज आपने गीता के 5वें अध्याय से श्लोक 7 से 11 की व्याख्या सुनी। व्याख्याकार थी डॉक्टर नीमा रानी। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम थारे संदेश मारे गीत।

थर संदेश मारे गीत इस कार्यक्रम के सभी सुनने के दारे की राम राम। साथियों दिन एतवार और कार्यक्रम है थर संदेश मारे गीत। आपके संदेश मत तक पहुंचे तो समझो आपके जो पसंद का फिल्मी कलाकार भजन रागनी जो भी है जो हमारे पास है वो जरूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का जो नाम ही है कि थर संदेश मारे गीत।

मैं सुरंतु चंद्रावल माजोड़ा ठाट का। फिल्म थी चंद्रावल, गायक कलाकार थे धीराज और भाव सिंह, और सुनना चाहा था आपने। और आप हैं गांव उगाड़ा जिला अम्बाड़ा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती, राघव, हरमन व उनके परिवार के सदस्य। इसी के संदेश हमारे पाए हैं गांव व डाकखाना निम्नाबाद झीन से जसबीर, जितेंद्र, गुरप्रीत, लवप्रीत कौर, कमजीत कौर व उनके परिवार के सदस्य।

ध्यान गया दरवाजे पर। गायक कलाकार थे करमपाल, किस्सा था जानी चोर का, सुनना चाहता था आपने। और आप हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी अशोक सुशील कैलाश नीलम रामा पाली वेके वीके पुरी व उनके परिवार के सदस्य और प्रोफेसर कुमार से लक्ष्मीकांत प्यारीलाल चंद्रशेखर विशाल काजल आराधना मीना ईशा अनु अंजू उनके परिवार के सदस्य और 7B से प्यारीलाल कविता सिद्धार्थ देव है उनके परिवार के सदस्य। और यह कार्यक्रम की अगली पेशकश प्यारीलाल संगी की आवाज़ में।

0: गोकुल गढ़ता चली थी गुजरिया, वह एक गुजरिया मेरे मन में बसी। और ये थे प्यारा सांगी और कार्यक्रम था संदेश मारेगी, जारी रहेगा लेकिन छोटे से विराम के बाद।
1: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
2: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
1: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
2: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
1: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
2: 9813173102।
1: कंपोज एक्सपोर्ट्स भरोसे का प्रतीक।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका? गुड्डी की फीस का।
3: दिखा।
4: 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
1: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
2: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
1: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
2: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
1: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
2: 9813173102।
1: कंपोज एक्सपोर्ट्स भरोसे का प्रतीक।
7: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
0: यह संदेश आकाशवाणी के सहयोग से पेश किया गया था।
8: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
9: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
2: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
1: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
2: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
1: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
2: 9813173102।
1: कंपोज एक्सपोर्ट्स भरोसे का प्रतीक।
0: और एक बार फिर कार्यक्रम था संदेश मारे गीत में आपका स्वागत और मैं आपका प्राण साथी गिरधर।

मेरे पाछा पाछावन का कौन सा मतलब तेरा सा। इस गीत की वह जो कार्यक्रम की जो अगले रागने हैं इन दोनों की मार्फ में मिलीजुली फिल्मैश इस तरह है। और ये हैं जोड़ माजरा इंद्रिय से राजकुमार निरंकारी अंशुल अवनी व उनके परिवार के सदस्य, संगोर से कमलेश रोहित विराट सम्राट काशवी व उनके परिवार के सदस्य हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश चंद्र अंकुश अरोड़ा, ढाणी कुतुबर हंसी से रामधारी अवाना अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप बेबी कीर्त व उनके परिवार के सदस्य।

एक चिड़िया का दो बच्चे थे, शोक दूसरी ना मार दे, गाय कलाकार थे सूर्या भट्टी। और कार्यक्रम की जो अगली पेशकश है इन सब साथियों की फरमाइश पे, और ये हैं गांव ध्यांगला से मांगेराम सैनी, राजपाल सैनी, बलबीर सैनी व उनके परिवार के सदस्य, और ये गांव ठोड़ कुरुक्षेत्र से लिख रहे हैं राजीव कुमार, विवेक, रितेश व उनके बहुत से साथी, योगी मोहला बाड़ा जिला अम्बाड़ा से, रवि कुमार, राहुल रंजीत को, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, गुरसबद व उनके परिवार के सदस्य, और ये हैं गांव तेजा मोड़ी से बंसलाल संधु व उनके परिवार के सदस्य, जगोड़ी से रणधीर सिंह बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, कीरत व उनके परिवार के सदस्य।

ऊंच नीच कर्मों से होते हैं, कर्म ही बड़े बताए। गायक कलाकार थे रणवीर, और सुनना चाहा था आप सबने। ये हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहारा छत्तीसगढ़ से, देव शंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव डोली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी, मास्टर अल कबीर व उनके बहुत से साथी। और ये हैं फ्रांसी से राजकुमार डूंडी, प्रमोद डूंडी, पुष्पेंद्र डूंडी व उनके परिवार के सदस्य। जो अगले कार्यक्रम की पेशकश है हमारी, वो रहेगी इन सब साथियों के संदेश पे। ये हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा व उनके परिवार के सदस्य। और ये संदेश हमारे पास है गांव राम सावला, जिला सहारनपुर से ब्रजपाल, श्यामवीर, पूजा, मोनी, सोनम, उन्ती, उत्सव व उनके परिवार के सदस्य। तो पेश है फिल्म पलघट का ये गीत।

कार्यक्रम में जो अगली पेशकश है इन सब साथियों के संदेश पर ही है। मुरादगढ़ कल्लाल से रमेश कंबोज, पिंकी वंश, भवेश कंबोज व उनके परिवार के सदस्य। ये हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ से हिंगड़ी रतलाम से जगदीश ठाकर, रंजू युवराज, शिवांगी ठाकर व उनके परिवार के सदस्य संदेश हमारे पास हैं। गांव की ठाणा जिला के अथर से करतार सिंह डांडा, सुमन, खुशी दिव्यम डांडा व उनके परिवार के सदस्य। और हमारे पास संदेश आए हैं, इन साथियों का नाम नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, प्रसाद, सोनल, बीबी सिया व उनके परिवार के सदस्य।

श्रद्धा शर्मा के गाए इस गीत के गला आज का थाई संदेश वाले गीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनारंगे दारी के राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम थारे संदेश मारे गीत। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

दोस्तों, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम जय जवान में। फौजी भाइयों और बहनों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो गए हैं और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए मैं हूं आपका दोस्त विपिन सहगल। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस बेहतरीन गजल के साथ।

दोस्तों, जगजीत सिंह की आवाज़ में प्रेम गीत फिल्म की ये गज़ल आपने सुनी। इस गीत को लिखा था इंदिवर ने और संगीतकार थे जगजीत सिंह।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

दोस्तों, ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में सत्ते पे सत्ता फिल्म से। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और संगीतकार थे आर डी बर्मन। किशोर कुमार की ही आवाज़ में याराना फिल्म का एक गीत सुनिए और ये है जय जवान कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बज

45 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता। दोस्तों, गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुरजीत बिंद्रख्या के गाए चंद पंजाबी गीत।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस कार्यक्रम में आपने पंजाबी गायक सुरजीत बिंद्रखिया के गाए चंद पंजाबी गीत सुने। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रस्तुति अमरीक सिंह की।
1: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से प्रस्तुत साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्री। साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आज की संक में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑन द स्टडी में ग्रेजुएशन के विभिन्न कोर्सों के बारे में जानकारी। ITI उमरी के ऑनलाइन आवेदन शुरू। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में पौधारोपण, योग और ऑडिटोरियम का उद्घाटन। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र द्वारा वॉकाथॉन का आयोजन। पर साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडी IIHS कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। साथियों, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडी में अगर आप भी ग्रेजुएशन का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडी में करवाए जाते हैं, क्या है उनकी अंतिम तिथि और क्या है साथियों आवेदन करने की प्रक्रिया। साथियों, ये तमाम जानकारियां हमें दे रही हैं।
2: मैं प्रोफेसर रीता, प्रिंसिपल IIHS KUK से हूं।
3: इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड ऑनर स्टडी में इस समय ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं उनका जो ऑनलाइन एडमिशन है वो शुरू हो चुका है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
2: जो हमारे यहाँ जो अलग अलग कोर्सेज शुरू हुई हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर हैं,

0: IIHS के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एरोनॉटिकल स्टडीज में, उनके हम लोगों के 25 मई से शुरू हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म और उसकी लास्ट डेट रहेगी 21 जून 2026।
1: मैम आपसे चाहेंगे कौन कौन से जो कोर्स है हमारे इंस्टीट्यूट कराता है वो थोड़ा विस्तार से हमें बताइए।
0: हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर 2 इंटीग्रेटेड 5-ईयर कोर्सेज चलते हैं, MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर हमारे पास है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंसेज, बैचलर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंसेज
1: जी,
0: बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स। और इसके अलावा हमारे यहाँ ऑनर्स के कोर्सेज चलते हैं जिनको हम सिंगल मेजर कोर्सेज कहते हैं
1: जी।
0: बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस के अंदर जो मेजर कोर्सेज हैं वो फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, मैथ्स ऑनर्स है। इसी तरह से बैचलर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंस सिंगल मेजर में हमारे यहाँ बॉटनी ऑनर्स, जोलॉजी ऑनर्स, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स के कोर्सेज हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स में सिंगल मेजर के अंदर हमारे यहाँ इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, संस्कृत ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स और बीए के अंदर भी हमारे यहाँ मैथ्स ऑनर्स है। इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में इस साल हमने नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सभी कोर्सेज के साथ साथ 2 हमारे यहाँ कोर्सेज हैं AEDP के अंदर जो आते हैं, वो है बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसको हम आम भाषा में MLT कहते हैं
1: जी।
0: दूसरा इसी के अंदर हमारे यहाँ एक कोर्स शुरू किया है इस बार, बैचलर ऑफ साइंस इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन।
1: तो मैम ये बहुत सारे कोर्सों की आपने बात की, इन सभी कोर्सों की एलिजिबिलिटी मैम क्या रहती है?
0: देखिए हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर कोर्स जो एक बच्चा ऑप्ट करता है
1: जी।
0: हम जैसे हमारे यहाँ है बैचलर ऑफ आर्ट्स है
1: जी,
0: उसमें एलिजिबिलिटी प्लस 2 के साथ इंग्लिश है। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस के अंदर 10+2 के साथ इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स का होना जरूरी है। वहां पर अगर वो केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट के तौर पे ऑप्ट करता है
1: जी,
0: तो उसको केमिस्ट्री पास होना चाहिए
1: जी।
0: बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर अगर वो मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो +2 लेवल पे उसके पास मैथ्स होना चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंस के अंदर उसके पास 10+2 के साथ इंग्लिश और बायोलॉजी। अगर उसको अलग डिसिप्लिन में जाना है जिसमें बॉटनी जूलॉजी है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी उसके पास 10+2 में होना जरूरी है। इसी तरह से बैचलर ऑफ कॉमर्स में 10+2 इंग्लिश के साथ है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 10+2 इंग्लिश के साथ
1: जी,
0: बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी 10+2 इंग्लिश के साथ, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में भी वही क्वालिफिकेशन है 10+2 विद इंग्लिश, बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन है 10+2 एग्जाम विद इंग्लिश, बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT में बच्चे को 10+2 या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास होना बहुत जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से हो वो बच्चा
1: जी।
0: अगर बैचलर ऑफ साइंस रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से बच्चा ऑप्शन लेता है तो वो 10+2 फिजिक्स का होना उसका अनिवार्य है। ऑनर्स की अपनी डिटेल्स हैं जो हमारे जो प्रोस्पेक्टस है, अगर आप उसमें थरली देखेंगे तो आपको वहां पर भी हर चीज डिटेल में मिलेगी।
1: मैम बहुत सारी जानकारी आपने दी, लेकिन आज का जो समय है विद्यार्थी भी ये कोशिश करता है कुछ इस तरह से हम कोर्स करें जिससे कि रोजगार भी हमें जल्दी से मिले, तो अगर रोजगार की हम बात करते हैं तो ये कोर्स करने के बाद कितनी संभावनाएं रोजगार की रहती है मैम?
0: देखिए हर कोर्स इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जो स्टूडेंट है वो आगे अपने लाइफ में नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ अपना रोजगार जरूर तलाश कर पाएगा, क्योंकि हर बच्चा 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ता है और एक NEP के तहत उसके पास स्किल कोर्सेज भी हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, वो हर साल वो बच्चा पढ़ता है, हर सेमेस्टर में पढ़ता है, तो जब तक वो ग्रेजुएशन करता है तो उसके पास स्किल्स भी होती हैं करने को और बहुत काफी एक्सपोजर होता है जिससे वो अपना रास्ता आसानी से चुन सकता है।
1: तो मैम अंत में आपसे चाहेंगे क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा हमारे विद्यार्थियों के लिए जो बहुत से कोर्स करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडी में?
0: मेरे हर बच्चे से एक ही बात कहना चाहूंगी मैं कि आप अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन हर जानकारी आपके पास है, मैक्सिमम कोर्सेज हम आपके लिए ऑफर करते हैं, ताकि आप अपनी चॉइस का सब्जेक्ट उसमें चुन सके। लिमिटेड सीट्स हैं हमारे यहाँ और सारा का सारा एडमिशन वो मेरिट बेस्ड है, एंट्रेंस बेस्ड नहीं है।
1: तो प्रोफेसर रीटा दलाल जी, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडी कुरुक्षेत्र विद्यालय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
0: शुक्रिया आप।
2: और साथियों, आपको ले चलते हैं ITI उमरी में। और साथियों, आपको बता दें कि ITI उमरी के ऑनलाइन जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। साथियों, अगर आप भी ITI में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्स ITI उमरी में करवाए जाते हैं, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं और क्या है आवेदन की प्रक्रिया, साथियों इसके बारे में हमें तमाम जानकारियां दे रहे हैं।
3: मैं जगमोहन, मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ इस समय और जिला नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हूँ इस समय।
1: इस समय हम बात करें जो ITI है उसका जो फॉर्म है, एडमिशनों का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
3: सर, इसके बारे में जैसा कि आपने शायद देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से, विभाग के द्वारा जो है अच्छी एड देकर के जो है समाचार पत्रों में ऑलरेडी जो है वो पब्लिश किया गया है एडमिशन से रिगार्डिंग जो हमारा शेड्यूल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा 2 जून से लेकर और लास्ट डेट इसकी 15 जून तक है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए
1: जी।
3: तो उसके लिए संस्थान में हमारी ओर से एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है, जो छात्र छात्राएं हमारे माध्यम से अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए संस्थान में निशुल्क फॉर्म अप्लाई करने की सुविधा जो है वो ऑलरेडी प्रदान की गई है। तो जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कराना चाहते हैं तो वो हमारे संस्थान में वर्किंग डेज में 9 से 5 आकर के और किसी भी समय आकर के वो अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं।
1: सर, आपसे चाहेंगे कि ये तो आपने बताया कब से कब तक हम आवेदन कर सकते हैं, अब आपसे चाहेंगे कौन कौन से जो कोर्स हैं, ITI उमरी की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं उनके बारे में हमें बताइए।
3: सर, इस समय हम 20 कोर्सेज जो हैं अपनी ITI में रन कर रहे हैं जिसमें मुख्यतः इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, टर्नर है, फिटर है, मशीनिस्ट है, स्टेनो हिंदी इंग्लिश है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, WWT है, वर्कवुड टेक्नीशियन, इस तरह के 20 ट्रेड जो है हम यहाँ इस समय रन कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट ITI कुरुक्षेत्र में। और साथ ही साथ हमारे इस सेम प्रेमाइसिस में गवर्नमेंट ITI विमेन भी विंग भी जो है इसमें है और वहां पे भी जो लड़कियों से संबंधित कोर्सेज हैं जैसे बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है, ड्राफ्टमैन सिविल है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, वहां भी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इस तरह के कोर्सेज जो है वो लोग भी रन कर रहे हैं।
1: सर, आपसे चाहेंगे जो कोर्सों की आपने बात की, मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी इन कोर्सों में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहता है? सर
3: उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा बिल्कुल फेयर और ऑनलाइन है। जैसे ही बच्चा उसमें अप्लाई करेगा, मेरिट बेस है सारा का सारा शेड्यूल
1: जी,
3: वो उसमें जैसे ही अप्लाई करेगा तो वो मेरिट जो है वो बन करके हमारे पास जो दाखिला का शेड्यूल फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरह से आता है तो सीट का जो एलोकेशन है वो NIC चंडीगढ़
1: की एलिजिबिलिटी क्या रहती है कि जो 10वीं विद्यार्थी है वो ITI कर सकता है या +2 वाला वो कर सकता है, वो थोड़ा सा हमें बताइए।
3: इसमें सर कुछ कोर्सेज हैं जो मैक्सिमम कोर्सेज मैट्रिक बेस्ड हैं और कुछ कोर्सेज जैसे हमारे यहाँ वेल्डर जो है उसके लिए योग्यता 8वीं पास है, ड्रेस मेकिंग है उसके लिए योग्यता भी 8वीं पास है। तो इस तरह के कोर्सेज हमारे यहाँ है, ये 1-2 कोर्सेज हैं जिनकी योग्यता 8वीं पास है लेकिन छात्र छात्राएं मैक्सिमम जो है वो 10th+2 या इवन ग्रेजुएट भी हमारे पास आते हैं क्योंकि मार्क्स का वेटेज है। अगर कोई छात्र +2 पास है और 60% से ज्यादा है तो उसके लिए 5% की वेटेज है, ऐसे ही ग्रेजुएशन में है तो आयोजित करते हैं
1: जी।
3: और 3 महीने में एक बार यानी कि क्वार्टरली हम प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला जो है निदेशालय के निर्देशानुसार जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो 2 ईयर जो कोर्स है उसको अगर बच्चा पास यहाँ से कर लेता है तो वो बच्चा एक इंग्लिश या हिंदी का हरियाणा बोर्ड से अपना एडिशन पेपर देके और उसकी इक्विवेलेंसी जो है वो +2 आर्ट्स के इक्विवेलेंट जो है वो हो जाता है
1: जी।
3: इसका गजट नोटिफिकेशन जो है बकायदा सरकार के द्वारा किया गया है तो डबल फायदा जो है ITI करने वाले बच्चों को वो ITI करने के बाद डबल फायदा जो है वो मिल पा रहा है, जैसे टेक्निकली भी वो स्किल हो गया और साथ ही साथ उसकी +2 भी हो जाती है।
1: सर अंत में चाहेंगे

0: संदेश आपकी तरफ से रहेगा हमारे विद्यार्थियों के लिए जो आईटीआई की तरफ आना चाहते हैं और आईटीआई के कोर्स करना चाहते हैं?
1: सर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा सबको कि आज का जो सरकार का जो रुझान है, केंद्र सरकार का रुझान है कि जो है युवा हमारा कौशल हो, उसमें रोजगार की रोजगार कर कहीं ना कहीं जॉब करने की बजाय अपना स्वयं का रोजगार करे, उसके लिए युवा को स्वयं कुशल होना पड़ेगा। उसके पास कोई ना कोई ऐसा कौशल हो, ऐसा कोई ना कोई टेक्निकल स्किल हो जिससे वो स्वयं का रोजगार कर पाए। और साथ ही साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इस समय हमारे संस्थान में जो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो है लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो लैब जो है CSR के तहत जो तैयार की जा रही है, और हम उम्मीद है कि इस मंथ के एंड तक शायद वो तैयार हो जाएगी। तो हमारा जो आने वाले जो बैच हैं, जो हमारा आने वाला बैच है 26-27 या 26-28 जो 1 ईयर और 2 ईयर कोर्सेज के बच्चे हैं, वो उस लैब के माध्यम से जो है मॉडर्न मशीनरी जो है उन बच्चों को देखने के लिए मिलेगी। और उस लैब का यहाँ एस्टेब्लिश करने का केवल और केवल ये एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को जो है मॉडर्न मशीनरी से अवगत कराया जाए। और साथ ही साथ हम कुछ हमारे यहाँ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम के तहत जो है वो रन करे जा रहे हैं, और भारत सरकार के द्वारा ऑन जॉब ट्रेनिंग 150 आवर्स की जो है सब बच्चों के लिए मैंडेटरी की हुई है। उसमें हम बच्चों को कम से कम 150 घंटे जो है वो इंडस्ट्री में भेजते हैं ताकि बच्चे जो है लेटेस्ट मशीनरी से अवगत हो पाए, इंडस्ट्री का क्या एनवायरमेंट है उससे बच्चे जो है अवेयर हो पाए, और वहां का एनवायरमेंट जो है उसके अनुसार जो है वो भविष्य में कार्य कर पाए।
0: तो जगमोहन जी प्रधानाचार्य आईटीआई उमरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
1: थैंक यू सर।
2: और साथियों, आपको ले चलते हैं श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में। साथियों, जहाँ पे दिनांक 5 जून को बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी। साथियों, सबसे पहले श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने, और साथियों इसके बाद महिला छात्रावास का शिलान्यास किया गया। साथियों, इसके बाद 5 जून को ही हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी द्वारा पौधारोपण किया गया। और साथियों, इसके अलावा इस समय पूरे कुरुक्षेत्र जिले में प्रोटोकॉल योग चल रहा है, तो इसलिए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और विशिष्ट अतिथि और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और बच्चों द्वारा योग किया गया। साथियों, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में इस बहुत से कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्य मंत्री हरियाणा श्री सुभाष सुधा, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुलपति श्री करतार सिंह धीमान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा और बहुत से कर्मचारी और अधिकारी इस विशेष कार्यक्रम में शामिल रहे। साथियों, इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा,
3: सम्मान के योग्य पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार सजेंद्र सिंह गोल्डी जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार सुभाष कलसाना जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार गुरनाम सिंह जी सैनी, हमारे पेहवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, हमारे आयुष यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वैद्य करतार धीमान जी, आयुष विभाग के हमारे महानिदेशक संजीव वर्मा जी, आयुष यूनिवर्सिटी के हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर कृष्णकांत जी और उपस्थित सभी हमारे विद्यार्थीगण, सभी हमारे योग साधक, अन्य सभी महानुभाव मंच पर उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण और हमारे BMS के सभी छात्र, लगभग इस यूनिवर्सिटी में 750 के करीब हमारे बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप सबको आज इस यूनिवर्सिटी के कार्य को गति देने में आज 2 महत्वपूर्ण कार्य यहाँ हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करूँगा, मुझे अपने इस गृह जिला में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि आप सबके बीच आकर के मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। युवा साथियों, ये वही भूमि है जिस भूमि पर हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथियों और अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को साथियों कर्म ज्ञान और योग का संदेश दिया था। साथियों, ये पवित्र भूमि है। उन्होंने कहा था, गीता में कहा था, योग पुरुषम कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कुशलता आती है। साथियों, जब इस योग की चर्चा कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर होती है तो उसका महत्व साथियों और भी कई गुना बढ़ जाता है। ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा योग की पत्ति ये हजारों वर्ष पहले हमें दी है, और योग के माध्यम से व्यक्ति साथियों चुस्त, आयुष विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हमारे सभी वाइस चांसलर और फैकल्टी स्टाफ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी प्रकार जो हमारा गर्ल हॉस्टल है जिसका आज हमने शिलान्यास किया है, वो भी लगभग 7.85 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर के एक साल के अंदर तैयार हो जाएगा। इसकी भी आज नींव रखी गई है, जिससे कि आने वाले समय में इस शिक्षा के क्षेत्र में और गति मिलेगी और हमारे बच्चों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। मैं ये दोनों आज यहाँ पर, चाहे इस ऑडिटोरियम का उद्घाटन हो, चाहे महिला छात्रावास का आज शिलान्यास हो, इस दोनों की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।
2: और साथियों, आपको जानकारी देंगे, आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र द्वारा आज दिनांक 7 जून को वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। साथियों, जिसकी शुरुआत हुई आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से। साथियों, इस वॉकाथॉन में शामिल हुए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारी, सभी उद्घोषक साथी, उनके परिवारजन। साथियों, इस वॉकाथॉन में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के श्रोता भी शामिल रहे। साथियों, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। साथियों, सबसे पहले आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के परिसर में लगाई गई स्टेज पर मैं योग की संगीत में प्रस्तुति हुई। साथियों, प्रस्तुत है एक झलक।

0: सातवीं यह वॉकाथॉन शुरू हुई आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से, उसके बाद द्रोणाचार्य स्टेडियम, मिनी सेक्ट्रिएट, रतगल और नई बस स्टैंड से होते हुए साथियों आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिसर में ही संपन्न हो गई। लेकिन साथियों पहली बार आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के प्रस्तुतकर्ता, उद्घोषक साथियों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने आमजन को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का संदेश दिया स्लोगन के साथ। साथियों प्रस्तुत है एक झलक।
1: जन जन की वाणी,
2: आकाशवाणी।
1: जन जन की वाणी,
2: आकाशवाणी।
3: भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे। जन जन की वाणी, जन जन की वाणी, वेलकम है जी। जन जन की वाणी, जन जन की वाणी, जन जन की वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: साथियों इसके बाद आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। प्रस्तुत है एक झलक। साथियों सबसे पहले हमारी उद्घोषक कविता कश्यप ने अपने विचार रखे।
4: अधिकारियों ने मिलकर जो प्रयास किया आकाशवाणी को एक उन्नति के मार्ग तक पहुंचाने का, वो बहुत ही सार्थक पहल है। तो मैं यही कहूंगी कि आकाशवाणी का ये 90 वर्षों का सफर हमेशा श्रोताओं से रहा है और श्रोताओं के दिलों में आकाशवाणी हमेशा रहेगी। तो मैं यही कहूंगी कि सुनते रहिए आकाशवाणी, बोलते रहिए मीठी वाणी।
0: साथियों इसके बाद डॉक्टर पुरुषोत्तम ने अपनी कविता सुनाई।
5: कविता का शीर्षक है कभी कष्ट। कवियों को भी कष्ट होता है। लिखता हूँ कविता गाने को, विश्व की गगरी बन जाती है। लिखता हूँ कविता गाने को, विश्व की गगरी बन जाती है। और मेरी प्यासी आंख मधु से विश्व को ही पी पाती है। ताल छंद निर्बंध मधुर स्वर सुख के गीत सुनाते हैं, पर मेरे हाथों कविता बन वो आंसू ही बन पाते हैं। ताल छंद निर्बंध मधुर स्वर सुख के गीत सुनाते हैं, पर मेरे हाथों कविता बन वो आंसू ही बन पाते हैं। फूटे शब्द वेदना बनकर बन पाए वो गीत नहीं, लगता है मेरे जीवन में कविता है पर संगीत नहीं। कवि बनने से इसीलिए संसार भागता रहता है, सो जाता जब अखिल विश्व बस कवि जागता रहता है। अपने तन से मांस काट ये सबको भोज कराती है। लिखता हूँ कविता गाने को, विश्व की गगरी बन जाती है। और मेरी प्यासी आंख मधु से विश्व को ही पी पाती।
0: साथ ही इस वॉकाथॉन में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी शामिल रहे और आपको सुनवाते हैं छोटे छोटे बच्चों की ये बेहतरीन प्रस्तुतियाँ।
6: लिखा हो शिष्य पे जमींदार, लिखा हो माँ बाप का प्यार, लिखा हो समझ।

0: साथियों इसके बाद इस वॉकाथॉन में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिए गए और साथियों मंच पे मौजूद रहे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की केंद्र निदेशिका मैडम विनय श्री, कार्यक्रम अधिशासी दीपक प्रकाश, कार्यक्रम अधिकारी श्री महेंद्र मोहन शर्मा, पूर्व केंद्र निदेशक अजीत सिंह गिल।
1: जिनका भी नाम आ रहा है उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आकर के अपना सर्टिफिकेट जरूर ग्रहण करें। सुरेश महला जी, सुशील कुमार, निधि।
0: साथियों कार्यक्रम के अंत में हमने बातचीत की आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की केंद्र निदेशिका विनय श्री से। साथियों जानते हैं उनके विचार। मैम, आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र द्वारा वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
2: जी, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं 8 जून को। 8 जून 1936 को पहला प्रसारण गया था और अब 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उत्सव में हर केंद्र द्वारा कुछ न कुछ कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र द्वारा आज 7 जून को वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 लोगों की भागीदारी थी। बहुत अच्छा सा एक हमने पैदल यात्रा निकाली जन जागरूकता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, फिट इंडिया के लिए, और आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ईंधन बचाना है उसके लिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत वृक्षारोपण हुआ, जन जन ने जुड़कर पूरा खुलकर भागीदारी की। आज 90 वर्ष के सफर में आकाशवाणी ने इस देश के हर बड़े इवेंट को एक पृष्ठभूमि रहा है आकाशवाणी, उसकी आवाज़

0: आवाज रहा है, भारत की आवाज रहा है। आप आजादी से पहले से लेकर अब तक, आप नेहरू जी की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच देखो तो वो आकाशवाणी पर प्रसारित हुई। फिर भारत के पहले मतदान में महात्मा गांधी जी का जब स्वर्गवास हुआ तो उसके कमेंट्री में, चाहे खेल का मैदान हो चाहे कोई बड़ी घटना हो, इस देश के दिल की धड़कन आकाशवाणी बनकर रहा है। और आज भी जब हम अपने 75 वर्ष आज़ादी के पूरे कर चुके हैं तो आकाशवाणी ने ढेरों कार्यक्रम किए। अब आकाशवाणी 90 वर्ष का हो गया है, उसके लिए हम पूरे भारत में हर केंद्र उत्सव मना रहा है और उसी के अंतर्गत आज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने वो उत्सव मनाया।
1: हमने देखा मैम, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति हुई, थोड़ा सा उनके बारे में हम बताइए।
0: पहले आज का जो कार्यक्रम था उसमें 5:45 पर हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, डांस योगा से शुरू हुआ, थोड़ा सा वार्म अप ज़रूरी होता है पैदल यात्रा से पहले। उसके बाद हमने 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, वॉकेथॉन किया, जहाँ हम VIP रोड से होते हुए, रतगल गुरुद्वारे रोड से जाते हुए, पिपली रोड से होते हुए वापस हमने आकाशवाणी में आए। तो शुरुआत और अंत आकाशवाणी पर किया। उसके बाद आने के बाद जलपान हुआ थोड़ा, उसके बाद हमने यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ रखी थी, तो छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, हरियाणवी में प्रस्तुतियाँ दी, रागनी गाई गई। आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफ़र में क्या क्या अनुभव रहे वो बताया। एक हमने वॉल भी बनाई थी जिसमें आकाशवाणी के साथ आपकी क्या स्मृतियाँ रही हैं वहाँ लोगों ने लिखा और वो पूरी वॉल हमारी भर गई है। देश के बच्चे बच्चे ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में आकाशवाणी के साथ अपना नाता, दिल का नाता जोड़ा है और उसी का उत्सव आज ये था। उसके बाद हमने सर्टिफिकेट भी बांटे जिन्होंने वॉकेथॉन को ख़त्म किया, संपन्न किया, और आज ये एक अच्छा, बहुत अच्छा आयोजन करके हम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। आप सब ने हमारा सहयोग दिया, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत से हमारे श्रोता भी आए। बस सभी को यही संदेश है कि जिस तरह से आपने हमें अपने दिल में पहले से बसा के रखा है, ऐसे ही बसा के रखिए और हम भी आपको एक से बढ़कर एक कार्यक्रम ज़रूर ला कर देंगे।
1: मैडम बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के।
0: धन्यवाद
1: साथियों। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आज के संक में सिर्फ इतना ही। साथियों आज के संक में वाचन, संकलन और संपादन रहा आपके दोस्त अमरीक सिंह का, प्रस्तुति सहायक दीपक और प्रस्तुतकर्ता विनय श्री। साथियों इसके साथ ही अनुमति दीजिए अपने दोस्त अमरीक सिंह को, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रस्तुति थी अमरीक सिंह की। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

दोस्तों आप सबका स्वागत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। आज यानी 7 जून को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित एक विशेष वॉकथॉन यानी पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन, समाज में एकता, स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर कल, अनुशासन और सकारात्मक सोच का संदेश दिया गया। उत्साह और उमंग से भरे इस कार्यक्रम में आकाशवाणी परिवार, श्रोताओं और शहरवासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो दोस्तों आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा की बधाई व शुभकामनाएं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: दोस्तों, आकाशवाणी की आवाज़ को 90 वर्ष हो चुके हैं। 8 जून 1936 को इसी दिन भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर अखिल भारतीय रेडियो यानी कि AIR ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है जब एक ऐसी आवाज़ का जन्म हुआ जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद AIR का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आज आकाशवाणी लगभग 591 स्टेशन्स का संचालन करता है जो कि भारत की 98% आबादी तक पहुंचता है और 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। आकाशवाणी का सेवा प्रभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज़ को पहुंचाता है और प्रवासी भारतीयों से जुड़ता है। दोस्तों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस विशाल देश के प्रत्येक निवासी को विभिन्न भागों में 24 घंटे सातों दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार और विचार उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के

0: माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
2: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral fora. Dr. Jayashankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jayashankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: West Bengal Women and Child Development

और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पे। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने रहे हैं।

अमृता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सोफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर ये पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहां परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर वो नजर आने लगी, पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आईं और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब के बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर

इसके बाद आई राजकुमार संतोषी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003 कैन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर की ये पहली फिल्म थी और उनकी पहली हीरोइन बनी अमृता राव।

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थीं। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना। और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था ये गाना।

जाने माने निर्देशक मिलन लुथरिया ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।

साल 2005 में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006 एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की आर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इवल हियर नो इवल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और अमृता

यहाँ तक आते आते अमृता राव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर। भीनी भीनी।

बबीता राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आईं। 2009 में हरमन बवेजा के साथ वो नजर आईं फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे

साल 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

इसके बाद कुछ फिल्मों में अमृता राव ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई, जैसे हे बेबी, लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आईं सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आईं अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीनाताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है आपका मनपसंद

दोस्तों आप सबका स्वागत है कार्यक्रम हेलो एफएम में। तो भाई हर रविवार की तरह आपकी खिदमत में हम हाजिर हो गए हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो एफएम। और दोस्तों आज का हेलो एफएम कार्यक्रम आप सुनेंगे अपने दोस्त विपिन सहगल के साथ। तो देर किस बात की, मिलाइए हमारा फ़ोन 01744221322 यानी 01744221322। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए सुनते हैं आज की पहली

0: हमारा नाम है जी मदनपाल, गांव दिनोद, छोटी काशी भिवानी से।
1: मदनपाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो एफएम में।
0: हाँ जी, हमें आज गीत सुनना जी, सुहाग फिल्म का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ, आवाज आशा भोसले, किशोर कुमार वो जी, मोहम्मद रफी और शैलेंद्र सिंह की।
1: कुछ अपने बारे में बताइए, गाना भी आपको सुनवाएंगे, जरा बताइए क्या काम करते हैं आप और आजकल आपका जो काम है वो कैसा चल रहा है?
0: नहीं जी, अब तो जी खेती बाड़ी करते थे जी, खेती बाड़ी में अब तो जी बिरानी जमीन है जी, उसमें कर नहीं पाते।
1: अच्छा,
0: बारिश आएगी जी जब करेंगे खेती।
1: ठीक है, तो आजकल आप फ्री हैं?
0: हाँ जी फ्री है जी।
1: रेडियो सुनते हैं अच्छे से?
0: अच्छे से सुनते हैं जी हम, आकाशवाणी सार, रोहतक, शिमला, सब कुछ।
1: आपको पता है कि 90 वर्ष का जो ये यात्रा है वो आज यानी कि 7 जून को पूरी हो रही है, 90 वर्ष का

0: हां जी,
1: तो इस बड़े ही पवित्र मौके पर आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे किए हैं, दूसरे श्रोताओं से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: नहीं जी, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी, हम अपनी पसंद का गीत सुनना चाहेंगे जी।
1: क्या बात है, चलो ठीक है, आपने हमें कॉल किया, आपका शुक्रिया, हम आपकी फरमाइश पूरी

0: हेलो एफएम सर्दी को राधे राधे।
1: हाँ जी नमस्कार राधे राधे, क्या नाम है आपका?
0: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल एमपी से।
1: केसरी जी आपका स्वागत है, कितने दिनों में आपने कॉल किया?
0: होगा सर एक आध महीने का अंतराल तो हो ही गया और ज्यादा भी हो सकता है।
1: तो मध्य प्रदेश में मौसम कैसा है आजकल?
0: मौसम बढ़िया है सर, अभी तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मानसून आने लगा है तो कुछ गर्मी से राहत मिली है।
1: अच्छा, मध्य प्रदेश में किस जगह से आप हमें फोन मिला रहे हैं?
0: बैरसिया डिस्ट्रिक्ट भोपाल।
1: डिस्ट्रिक्ट भोपाल से आपने कॉल किया?
0: हाँ जी हाँ।
1: तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आप बड़े चाव से सुनते हैं और आपको अच्छे भी लगते हैं?
0: सर लगभग ये फोन इन कार्यक्रम और डॉक्टर वाले प्रोग्राम सुनता हूँ मैं।
1: ओके, तो आज के इस कार्यक्रम में कौन सी फरमाइश आपकी पूरी की जाए?
0: यादगार मूवी से सुनवा दीजिएगा सर, कोई सा भी सॉन्ग उसमें सभी बढ़िया हैं और आपके लिए रहेगा और हेलो फरमाइश रेडियो एकता ग्रुप के सभी मेम्बरों के लिए।
1: ठीक है, आपने हमें कॉल किया, आपका बेहद शुक्रिया, हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं।
0: जी फरमाइश पूरी करने के लिए आपका भी बेहद शुक्रिया।

0: प्यार और सत्कार भरी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, क्या नाम?
0: ठंडी ठंडी कूल कूल जी।
1: क्या बात है, क्या अंदाज है आपका, क्या नाम है आपका?
0: मेरा नाम है सोम दत्त बोल रहा हूँ जी, मैस गेट नाभा जिला पटियाला पंजाब से बोल रहा हूँ।
1: वाह जी वाह, बढ़िया जोश है आपकी आवाज में और बड़े प्यार से आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया।
0: आप से सीखे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं आप से ही सीखे हैं।
1: क्या बात है, तो क्या काम करते हैं सोम दत्त जी आप?
0: मेरा टेंट कैटरिंग का काम है जी नाभा में।
1: अच्छा, तो आपका जो आजकल जो ये बिजनेस है बढ़िया चल रहा है?
0: ठीक है सर, अब तो ठीक है। देखो कोई भी काम है कभी कभी ज्यादा चलेगा, कभी कभी कम भी चलेगा
1: जी जी।
0: उसकी साल की एवरेज निकाल के फिर आदमी को काम करना चाहिए
1: जी जी जी, जी। तो अपने काम को एंजॉय करते हैं आप?
0: बिल्कुल एंजॉय करते हैं सर, जब काम होते हैं तो काम करते हैं, जब फ्री होते हैं तो सारा दिन एफएम सुनते हैं जी।
1: क्या बात है, क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा आपकी बातचीत सुनकर कि आप अपने काम को भी इंजॉय करते हैं साथ साथ रेडियो को भी इंजॉय करते हैं।
0: जिंदगी को इंजॉय समझकर जीना चाहिए, काम में ज्यादा काम करना चाहिए और कभी भी जिंदगी में टारगेट नहीं सोचना चाहिए
1: जी
0: कि मैं 10 लाख रुपए कमाना है, 10 लाख तो मैं 3 दिन में कमा लूंगा तो उसके बाद काम करने का मन नहीं करेगा
1: जी।
0: जिंदगी रिकॉर्ड बनाने के लिए होती है, टारगेट के लिए कभी नहीं जीना चाहिए बंदे को
1: जी। जी बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो आज के इस कार्यक्रम में आपकी कौन सी फरमाइश है जो पूरी कर दी जाए?
0: देखो आपके चैनल पे चलने वाले सभी गीत बहुत अच्छे हैं जी
1: जी,
0: लेकिन मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना सुनेंगे जी आज।
1: कौन सा गाना सुनेंगे? मेरा गांव मेरा
0: जो
1: देश।
0: जो भी आप सुना दोगे सर वही बहुत अच्छा होगा। आपसे बात करके बहुत खुशी मिला हमको मन में।
1: क्या बात है सर,
0: आओ कभी पंजाब में ठंडी ठंडी लस्सी पिलाएंगे जी आपको।
1: जी जी, आपने हमें कॉल किया, आपका शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मैं उदय भान ठाकरे छिंदवाड़ा उत्तर प्रदेश से।
1: उदय भान ठाकरे जी, आपने छत्तीसगढ़ से फोन मिलाया?
0: नहीं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश एमपी सर।
1: मध्य प्रदेश से आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो एफएम में।
0: जी हाँ सर।
1: तो हमारे कार्यक्रम आप ट्रांजिस्टर से सुनते हैं या ऐप से सुनते हैं?
0: ऐप से सुनते सर, क्योंकि काफी दूर है।
1: हाँ हाँ, तो कौन सा कार्यक्रम हमारा आपको सबसे अच्छा लगता है?
0: सर अधिकतर तो मैं ये फोनिंग कार्यक्रम सुनता हूँ, क्योंकि समय समय तो सब कार्यक्रम रेडियो स्टेशन है, सबको साथ देना पड़ता है
1: जी,
0: इसलिए मैं अधिकतर मैं हेलो फोनिंग कार्यक्रम में भाग लेता हूँ सर अधिकतर।
1: तो साथ साथ आप अपना काम भी करते हैं?
0: काम कुछ नहीं सर, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, फिलहाल मैं घर में रहता हूँ।
1: वाह जी वाह, तो आप तो
0: 68 उम्र है सर मेरी।
1: क्या बात है, क्या बात है, तो आप तो सीनियर सिटीजन है, आनंद ले रहे हैं अपने जीवन का। आपने अपनी लाइफ में बहुत काम किया होगा, ये तो हम समझ सकते हैं। तो आपका अभी रिटायर्ड लाइफ कैसी चल रही है?
0: मस्त है सर, घर में रहते हैं
1: जी,
0: सभी जगह के एफएम रेडियो सुनते रहता हूँ
1: जी।
0: और
1: जी,
0: आपको बता दूं सर, मैं एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो श्रोता हूँ मैं
1: जी। जी,
0: जगह जगह पे श्रोता सम्मेलन में जाता रहता हूँ, सब श्रोता भाई से मिलते रहता हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। तो आज के इस कार्यक्रम में कौन सी आपकी फरमाइश पूरी की जाए?
0: फिल्म सर, पुरानी फिल्म है हमराज
1: जी,
0: मोहम्मद रफी की आवाज है और गीत के बोल है हे नील गगन की तले धरती का प्यार पले,
1: महेंद्र कपूर की आवाज में।
0: महेंद्र कपूर, सॉरी सर, ज्यादा जल्दी में गए, महेंद्र कपूर की आवाज है।
1: चलो ठीक है सर, आपने हमें कॉल किया, आपका बेहद शुक्रिया।
0: सर मेरे एक दोस्त का नाम दे सकता हूँ जो अधिकतर कॉलिंग करते रहते मेरे से?
1: जी जी,
0: ये नाना खेड़ा उज्जैन से अपने से एक मित्र है हमारे
1: जी,
0: लोकेंद्र वर्मा जी।
1: जी जी,
0: ये अधिकतर फोन लगाते रहते, मुझे भी बताते रहते, आज बड़े मुश्किल से लग गया फोन सर मेरा।
1: चलो ठीक है, आपका शुक्रिया।
0: ओके सर, नमस्कार।

0: हेलो एफएम, हेलो एफएम, हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ जी, आदरणीय विपिन साहब जी को भी हमारा सादर प्रणाम। नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी सर, हम यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से बोल रहे हैं।
0: आपके आसपास एक तो शोर है, उस शोर को बंद कीजिए। यदि आप किसी व्हीकल पे हैं तो उसको बंद कर दीजिए।
1: जी सर,
0: जब भी आप आकाशवाणी में फोन करें कृपया करके अपने आसपास जो है किसी भी तरह का जो शोर है उसको बंद कीजिए।
1: जी सर, अभी आवाज क्लियर आ रही है सर?
0: आवाज तो आ रही है लेकिन आपके आसपास अभी शोर है।
1: जी अभी तो शांत है सब।
0: चलो, आप कहाँ से फोन मिलाया आपने?
1: जी सर, हम यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से बोल रहे हैं।
0: संतोष जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो एफएम में।
1: जी जी, धन्यवाद सर जी। और आपके सभी कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुनते हैं
0: जी।
1: और कई सारे कार्यक्रमों में हमारी सहभागिता भी रहती है
0: जी।
1: और जी, और देखिए, आपके कार्यक्रम में हम 6 महीने के पश्चात ही आपसे कॉल मिलाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते।
0: बहुत बढ़िया, हमें भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। और आप कौन सा, किस तरह के गीत हैं जो सुनना चाहते हैं?
1: जी हमें तो वैसे कई प्रकार के गीत पसंद करते हैं हम। वैसे पुराने, नए मतलब नए, बिल्कुल नए भी नहीं, 90s के सॉन्ग अधिकतर पसंद करते हैं। और अपने 70s 80s वाले ये भी गीत हमें बहुत पसंद आते हैं।
0: संतोष जी, क्या काम करते हैं आप?
1: जी सर, हम एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं सर, पुणे में।
0: क्या बात है, तो साथ साथ रेडियो भी सुनते रहते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास जब समय रहता है, जब हम घर पे होते हैं तो बिल्कुल आकाशवाणी कुरुक्षेत्र हम ट्यून किए रहते हैं।
0: क्या बात है, तो आज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में आपने फोन मिलाया, आपकी कौन सी पसंद है जो पूरी कर दी जाए?
1: जी जी सर, गीत अवश्य सुनेंगे, उसके प्रथम हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार और सभी श्रोता साथियों को आकाशवाणी के 90 साल की गौरवशाली यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के हेतु हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं सर जी।
0: धन्यवाद आपका, आपको भी बेहद शुभकामनाएं, बधाई। आकाशवाणी जो है वो आवाज जो है 90 साल से गूंज रही है हमारे रेडियो सेट्स पे और जन जन तक हम जानकारी लेकर आ रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं लोगों का। और कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो रेडियो के थ्रू इतिहास बना चुकी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आज के कार्यक्रम में बता दीजिए कौन सा गाना सुनवा दिया जाए।
1: जी सर, देखिए गीत हम एक मुकेश साहब जी की आवाज में सुनना चाहते हैं, मुक्ति फिल्म का।
0: जी,
1: सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती।
0: वाह, तो थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी अवश्य, आप कह रहे हैं तो थोड़ा प्रयास करेंगे जरूर।
0: जी जी।
1: सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, बस इतना ही सर।
0: क्या बात है संतोष जी, बहुत अच्छा गाया आपने। ये जैसे ही हमारा जो हेलो एफएम कार्यक्रम समाप्त होगा आप सोने की कोशिश कीजिए और ये गीत सुनिए।
1: जी जी जी जी, अवश्य अवश्य सर जी।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार।
2: हेलो सर जी, नमस्ते।
1: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम है जी, नाम रवि तीति कुमार, पांचाल गांव महेशपुर से बोल रहा सर जी, सहारनपुर जिले से।
1: रवि कुमार जी, क्या काम करते हैं आप, क्या बिजनेस है आपका?
2: सर जी बस मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ सर जी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। और आज कैसा रहा फिर आपका दिन?
2: आपके बस आपके अच्छे वास्ते, माता रानी के अच्छे वास्ते बढ़िया चल रहा दिन तो।
1: बहुत अच्छे। तो आज इस कार्यक्रम में आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, कौन सा गाना चुनकर लाए हैं?
2: जी सर जी, मैं गाना सुनना चाहूँ जी, माता रानी का भजन सुनना चाह रहा था जी आपसे।
1: अच्छा, तो कोई विशेष वजह है इस भजन को सुनने
2: सर जी? विशेष क्या है सर, तो गर्मी पड़ रही है जी यार, एक बस थोड़ा यहाँ बस माता रानी के चरण में रहना चाहिए, सब कुछ ठीक होता है भगवान जी के चरण में।
1: ठीक है ठीक है, तो हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। माता रानी का ये भजन सुनिए और सभी जो परिवार के सदस्य हैं, आपके जो दोस्त हैं, इस भजन में डूब
2: जी। हमारा दोस्त है जी, तो
1: जी
2: वो हमारे पास पड़ता है जी, यही रास्ता है
1: जी। जी जी जी, शुक्रिया आपका।

0: हेलो एफएम।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: मांगीलाल चंदेल नाम है सर, जिला गुना मध्य प्रदेश से आपसे बात कर रहा हूँ।
0: तो मांगीलाल जी, पहले भी आपने हमें कॉल किया या फर्स्ट टाइम कॉल मिलाया?
1: नहीं सर जी, मैंने आज मेरी जिंदगी में पहली बार आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को कॉल किया है।
0: क्या बात है, क्या बात है, फर्स्ट टाइम आपका कॉल लगा, तो खुश हैं आप?
1: हाँ खुश हूँ सर जी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पहली बार कॉल लगा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और आपसे बात हो रही है तो अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरे मित्र हैं नरेश प्रजापति जी, उन्होंने आपका नंबर दिया है और उन्होंने बोला कि आप कॉल लगाइए।
0: वाह जी वाह, तो जितना अच्छा सर आपको लग रहा है उससे ज़्यादा अच्छा हमें लग रहा है, क्योंकि जब रेडियो के थ्रू हम किसी अपने श्रोता को खुश देखते हैं, प्रसन्न देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
0: तो आप क्या काम करते हैं वहाँ पर, किस तरह का आपका दिन रूटीन बनता है, कैसे आप दिन गुजारते हैं, बताइए।
1: सर जी, मैं एक किसान हूँ
0: जी,
1: खेती किसानी करता हूँ।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो खेती में आजकल आपने क्या, खेतों में क्या उगाया हुआ है?
1: सर जी, अभी तो मेरी खेत खाली हैं
0: जी,
1: जब बारिश होगी, जब अपन उसमें कुछ खरीफ की फसलें लगाएंगे, जैसे मक्का है, धान है, उड़द है, मूंगफली है, इस तरह की फसल बारिश होने के बाद लगाएंगे, अभी खेत खाली है।
0: जी जी, चलो हम प्रार्थना करते हैं कि बरसात जल्दी आए, मानसून जल्दी आए और जो आपका प्लान है वो आपके अनुसार हो जाए और आपके यहाँ अच्छी फसल हो, खुशियाँ हों चारों तरफ, परिवार खुश रहे। तो आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: सर जी, फिल्म का नाम तो है गाइड और गाने के बोल हैं, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए, तू तो ना आए तेरी याद सता।
0: क्या बात है, कितना दर्द है आपकी इस आवाज में, जैसे आपने कहा कि दिन ढल जाए रात ना जाए, तो थोड़ा सा गुनगुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: नहीं सर जी, गुनगुनाते नहीं आता है क्योंकि मैं पुराना, मेरी उम्र के हिसाब से मैं पुराने ही गाने सुनता हूँ और पुराने गाने मुझको अच्छे लगते।
0: बहुत खूबसूरत गीत आपने चुना है मांगीलाल जी, यकीन मानिए आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं।
1: करके बहुत अच्छा लगा और मैं कुछ आपकी अनुमति मिल जाए तो दो तीन मित्रों को याद कर सकता हूँ।
0: जी जी,
1: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं और रामबाबू शर्मा जी हैं, इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी जी, शुक्रिया आपका
1: जी।

तो दोस्तों, ये था आज का हेलो एफएम कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया विनय श्री खुराना ने, और इस कार्यक्रम को बनाने में तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर राहुल ने। दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आपसे कुछ और बातचीत करें। हम इस वादे के साथ आपसे जुदा हो रहे हैं कि अगले रविवार 10 से 11 बजे तक एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो एफएम। अब अपने दोस्त विपिन सहगल को आज का हेलो एफएम कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने

हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।